रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबके निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम

सर उतारे सबसे ऊंच राम परगास। निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा। उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे। गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया। सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार। राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम। लूट ले सात पत सोवे सात जना पग मल मल सोवे। पंच फूट जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत वे आए। तीन गुना के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे। कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए। कहो नानक भगत प्रभ सार दिन पगती सब होए खुआर। गौन महला पंजवा। कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ। जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए। राम जपते जन

करम इह तत् ज्ञान, साध संग जपिए हर नाम, सागर कर बोहित प्रभ चरण, अंतर जामी प्रभ कारण करण, राख लिए अपनी कृपा तार, पंच दूत पागे विकराल, जुए जन्म न कबहू हार, नानक का अंग किया करतार, गौण महला पंजवा, कर कृपा सुख आनंद करे, बालक राख लिए गुरुदेव, प्रभ कृपाल दयाल।

कटपट अंतर सर्व समाही अपने दास का हल्क पल तुम्हारे पतित पावन प्रभिर तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद पंक मंत पजिय भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बांचित पूरन फल पाए कर्म कारण समरत दयार सर्व निधान महाविचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गौण महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत करिए संसार बड़ पागी पाये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल किसको पोए ना सके जमकाल जग में आया सो परवान गुरमुख अपना खत्म पछाण हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटे उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूरन मंत हर तन काट किए पंडार मिल सतगुर सबका सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गौण महला पंजवा पाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ मां विचार पंच दूते मंत सौ शरणाई पूरन नाथ जंत अपने को दी जय हाथ रहाओ सिमरत

कर कृपा दी जय गुरुदेव। गौण महला पंजवा संत का लिया तर्क बिगारो, संत का निंदक आकाश के तारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तक्षिण ताल, सोई

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बिलायण। रहाओ नारायण।

गायन बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है साध संग जपे निरंकार निंदक के मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिस्कोवत ना है जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए जो जो शरण पया हर राय सो दास रखिया।

सब लोग संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल स्थान निंदक से गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले, गौंड नरु मरे नर काम ना आवे।

कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। गौंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कत बिन से गगन न जाए ले। मोह बैराग पायो एहो जियो, आए कहाँ गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहाँ ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म किन जियो दीन रे, हर में तन है।

कबीर जियो की हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डारियो हस्ती क्रोध मूड में मारियो हस्त पाग के चीसा मारे क्या मूरत के हो।

कालो साथ हथ ना तोड़े तरह ध्यान वहां कर दे बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोत कुंचर को दीना। कुंचर पोत ले ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है। तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ ना एहु जति कहा वैसे हो। ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई। रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना सीख मंगासी। ना इस पिंड ना रक्तू राती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती। ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत सोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर हो राम की अंश जस कागद पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़ गोकाल। एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई। रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे मुंडिया अंधन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट हमको साथर उनको खाट। मूड पलोस कमर बद पोची हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूढ़क की टेक। सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पद शरण कबीर। गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश।

शंख को बिख बिछे संसार, कर सीगार बह पखियारी, संत की खिड़की फिरे बिचारी, संत भाग ओ पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे, साकत की ओ पिंड परायण, हमको दिष्ट परे त्रकडायण, हम तिस का बो जानिया पे ओ।

गगन महापवित तपे तपी सर डोले चीत रहाओ सोहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत से सूती साधु कै ठाडी दरबार शरण तेरी मोको निस्तार सोहागन है अत सुंदरी पग नेवर छनक छन हरी जो लग प्राण तऊ लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पावन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है छेदे सुहागन उर्वार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कौ कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये साधु बिन कैसे अवगत जाये जैसे माँ पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, किस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अतरूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम।

सोडें अन्न करें पाखंड ना सोहागन ना ओरंड जग में बकते दूधा तारी गुप्ती खावे वटका सारी अन्न बिना न होए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जान्या तन अनाद ठाकुर मन मान्या राग गौंड बाणी नाम देव जी की कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद असुमेद जग ने तुला पुरख दाने प्राग इसनाने तो न पूजे हर कीर्तनामा अपने रामे पाजरे मन आलसिया रहाओ गया पिंड परता बनारस अस बसता मुख बेद चतुर परता सगल कर्म अच्छता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सिवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पदनामा तरस पव सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए प्राण तजे वहां को ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा जो बिखई हेरे पर नारी।

थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर पोतक अलख लिखाया जैसे दिखे हेत पल नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गौंड बाणी नाम देव जी की कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम ले उत्तम कर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंगले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमे हर हर करत नहीं दुख जमे रहाओ हर हर नाकस हरे प्राण अजय मल की ओ बैकुंठे थान सुआ प्रावत गन का तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल कातनी कपटे परी सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सुला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली को दिया प्रणवे नाम ऐसो हरी जास जपत पै अप

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहो मीता, तनवे नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंडे आज ना में बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा राम।

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक नीश।

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवाता हूँ कि गौंड जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब व्यथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ, जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पनार सिगार समेत, सगली सुमृत श्रवणी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने, जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजो निहांडे, निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया, जोड़

जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कभू जियरा ऊब चरक है कभू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो तू दे अंते होए सखाई राम करी महला पहला सर्व जोत तेरी पसर रही जय जय देखा कह नर हरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाड़िया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जय पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्व रहा पर पूरे सतगुरु मिले अंधेरा जाए जय देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेंगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वसे कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे किन बिद सागर तरिये जीवतियां नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला आशा अंदेशा दे

पाप चोली मंगल चौताई तीर्थिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली करते बार न ला गए रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे सुध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता तीरथ आखा तामन सेव करे कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे राम करी मेला पहला सुन मा चिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरह सगले कुल पारे सो अवधूत ऐसी मत पावे ओनस सुन समाज समावे रहाओ तिथिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

प्राप्त पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवे तुत आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किछ किया सो किछ करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक तिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सह किया गल्ला दर किया।

कौन बुझे बिद जाने उत्पुज चलत आप कर चीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तुस्ते मुक्त परमगत हो ही रहा दिन में रैन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कैसा।

हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा गुर चरण सेवक लागा गुर सतगुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कलि महला पहला साधन पोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आ गए गुरमत नहीं लीनी गुरमत पत कोई।

दिया दिह तारी, राम कला निभे पत सारी, तार टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी दिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग देओगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंध जपे निरंकारी, सहज जगोता बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्द लूटा, मन में मुंदरा हर गुर शरणा, नानक राम भगत जन करना।

कर पहना। सतयुग सच कहे सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सतयुग धर्म तैर है चार, गुरमुख बूझे को भी चार। जुग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई रहाओ। त्रेता इक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर। गुरमुख बूझे सो जी होई, अंतर नाम वसे सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए। द्वापर तरम

गुरमुख नाम वखाणे कोई सब जुग में नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम किया है भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम वडे।

कर कृपा आप मिलावे। राम मोह को हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे। राव हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे। हम हो तेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवड पागी, रिद मन तन प्रीत लगावे। बिन प्रीति करे बहु बाता, कूड़ बोल पूरो फल पावे। मोको तार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पही ले पावे। हाँ काटो काट बाड सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे। राम कली महला चौथा। जे वड पाग होवे वड मेरे, जन मिलदियां तिल न लाईए। हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तित न लाईए। राम मोको हर जन कारे लाईए, हम पानी पखा पीसो संत आ गए। पग मल मल तूर मुख लाईए। रहाओ हर जन वडे वडे वड ऊचे, जो सतगुर मेल मिलाईए। सतगुर जेवड अवर न कोई, मिल सतगुर पुरख त्याईए। सतगुर शरण परे तिन पाया, ने ठाकुर लाज रखाईए। इक अपने स्वाए आए बहे गुर आ गए, जो बगुल समाद लगाईए। बगुला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखु मुख लाईए। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराईए। राम करी महला चौथा। सतगुरु दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगे गुरचरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। राम में हर हर नाम मन पाया, मैं हर दिन अवर न कोई बेली। मेरा पिता माता हर सखाया। रहाओ मेरे इच्छिन प्राण न रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुर सरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरे से नकते, तिन कस कस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा। सतगुरु दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उधारे। जी दान गुरपूरे दिया, हर अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई। तन तन वड पाग हमारे। रहाओ कोट कोट से तिस्त्यावे, ताका अंत न पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे, रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वडा वडेरा, गुरमुख रखो उरदारे। जे वड पाग होवे ता जपिए, हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है, हर रास है कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारिक हर प्रत पारे। राग राम

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई, मन तन साथ की।

पर पंथ छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई सतगुरु मिलो नवे निग पावो इन विद तत् बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किसो करो बुराई सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता सहज मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा आवत हरख ना जावत दुखा न व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुरु पूरा पाया तो उतरी सगल बेगनी ए बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे तें हर हर हर रस पोगनी रहाओ सुर्ग पवित्रा व्यर्त पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जत कत देखो हर गुनी मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना तैं अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का ता निवासा जै अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हों त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस

करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गत मिच आपे जाने हर आपे पूर पंगारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरे।

अक्षर मेरा अनतराज भोग रसमानी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ कीर्तना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दे परवाओ रहत है स्वामी इक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्णा काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ न कतु जाता बरन न साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसमा हमारा।

पूरन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माथे वजे बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

अगली किछ खबर न पाई, रोवन हार दे ऊट सुदाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंध, ते तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हो।

आए खिंचया सूत आई खाए चो में एक मत है किया तें बिखरे थान अनक खिड़कियां खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल।

जप नाथ दिन रहनाई, तेरी चिंता दो दिहाई। रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे तू का तृप्त ना पावे।

फिर क्यों जपिया नाथ दिन रह नाई। हुन पाया गुरु गोसाई राव दूजा रामकली महला पंजवा। करन करावन सोई आन न दिसै कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना। गुरमुख मिलिया रंग माना और सोरे हर रस मीठा गुरमुख किने विरले बीठा। राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर पै ने काम। तन मन शीतल अगन निवारी अनद रूप प्रटे संसारी। क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाऊ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा से नीच निवाजिया। खोल तिवारा मेल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा हाँ तेरा तू मैं मन बूठा। राम करी महला पंजवा। सेवक

काज हमारे पूरे सतगुरु बाजे अनहद तूरे सतगुरु रहाओ मेहमा जा की जहर गंभीर होए निहाल दे जिस तीर जाके बंधन काटे राए सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले परया सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जस कत देखो आप।

गीत सो पंडित गुरुशब्द कमाए, त्रय गुण की ओस उतरी माए, चतुर वेद पूरन हर नाए, नानक तिसकी शरणी पाए, राम कली महला कन्यवा, कोट विघ्न नहीं आवे नेर, अनक माया है ताकि चेर, अनक पाप ताके पानी हार, जाको मया पल करतार, जिसे सहाय हुए भगवान, अनक जतन ओआ के संजाम, रहाओ करता राखे कीता कौन, कीरी जी तो सगला पवन, बेअंत महिमा ताकि केतक बरन।

संत जनी परदास तया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालनहार राज रंग रूप सब पूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सातत इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे इहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन्हीं बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच शब्द तें पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग

नीचल आसन बेसुमार दुगना डोले कतहु जावे गुर प्रसाद को इहु मेल पावे प्रमते मोह न माया जाल सुन समाद प्रभु कृपाल ताका अंत न पारावार आपे।

आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पर्दा संत प्रसाद मोहे कबू न करदा संते संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध परदास जय।

तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गायले मीता, हर सिमरत तेरी।

कर कर ठाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे

पंजवा कर संजोग बनाई काच तिस संग रहो याना राच प्रतपारे निसार समारे अंत की बार ऊठ सिधारे नाम बिना सब झूठ परानी गोविंद पदन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ

कर जामी राम करी महला पंजवा जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते क्यों का ठहराया सत माहे ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरुष का

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

जाय मन अटल ता छूटे माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होई निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बिचारा बिन हर

ਓ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਊਤਮ ਭਾਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गप नहीं काई गुरपुरा पेटत उधार राव।

त्याग सतसंगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा। आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक। रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्त तू आप पछान। पी अमृत संतन प्रसाद वडे पाग हो।

परमेश्वर स्वामी काटकों प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंदनते होई चोट। हृदय जप परमानंद, मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास।

टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास। एको नाम त्याए मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही त्याया आनंद।

माटी को जल दहिस्त्या गए ऊपर चरण तले आकाश काट में सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जियो आप निमख ना बिसरे जी पगतन के।

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

वर्त तपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर कार।

तीरथ परम सुजाद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभि

हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान।

जोगी सह सब किसे मया आज पुरख अपरम परसो प्रभ हर नाम हृदय लय पार पया मुए को रो में किसे सुनावे पैसा गर असराल पया देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

सतगुरु सच सखाई राम कली मैला पहला औहठ हस्त मली कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हों मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी परपंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत्व मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लोके एहो तन चिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

सोध तरह पावसागर आत्म तत्व विचारी गुरु सेवा ते सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्त तेहा पगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मा

अगर जोगी ना सच पल्ले पाए कुछ सिंगरी शांत ना आवे जोगी अभिमान ना विचों जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी गुरमुख होवे तां तंती वाजे इन विधि तृष्णा खंडी।

हर्षे की चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सो जी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करे जे शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेश करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख हो वै सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है जोगी।

भगत खजाना गुरुमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजे तिसते बिन सह अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई बिन नामे सब पूली फिर दी देखा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पाई शिव नगरी में

नाम नमन निध पाए, मनसा मार मन सह समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे विस्मादी, चित अदिष्ट लगाई, अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई, हौं गुरसाला ही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई, नानक एक कहे बेनंती, नावो गत पत पाई, राम कली मेला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई, रहाओ हर दिन सब कुछ मेला संतो, क्या हो पूज कराई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाना मन वसाई, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्दी खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाण मन वसाई पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो पूर करें वड्याई अखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तार।

एक पेक करें सिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अनदिन पगत करें दिन राती राम नाम उर्धारी अनदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन पगत न हुई कभी सह पाए पगत सवार।

तिन्हें पछाता जिसनों कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जय मिलिए राम मुरारी, अंग दिन जागत रहे दिन रात।

नाम वस्या कट अंतर पूरे की वड्याई रहाओ। आपे करता आपे पुगता देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो कर रहया अवर न करना जाई। आपे साजे सिर्फ उपाय सिर सिर तंदे लाई, किसे सिरे वो तास पावो सब गुर मेल मिलाई। अपना आप आप उपाय अलख न लखना जाई, आपे मार जी वाले आप

जिस हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा वाणी सब सुनाई नानक सुन वेख रहा विस्माद मेरा प्रभ रविया सर्व थाई राम करी महला पंजवा अष्टपदिया।

किन्हीं मून औ तूत सदाया। कोई कह तो अनन पगौते मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हीं कया हो तीर्थवासी कोई अन पज पया उदासी। किन्हीं पवन सब करती करया मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हीं कया मैं कुल्हे वड्याई।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग सो दे, दिन नाम यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले ब्योरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या, राखन हार समार जन

जाका नाम सिमरत पहु जाए, कैसे संत जना राखे हर राय, ऐसे राखन हार दयाल, जत तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्यो तुखा मितंत, तन बिगसे गृह आवत संत, लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किसानी ज्यो राखे रखवाला, महत्ता दया ज्यो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे

जो पावक संग सीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश। जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौखोत। जो चकवी सूरज की आस, जो चात्रिक बूंद की प्यास। जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत। दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए। क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद। राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब देखिए।

संतृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाई पूरे गुरपुरी मत दिनी हर बिन आ

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करके प्रभ अंत न पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने। जी जन सब खेल तेरा क्या को आंख वखाने, आखें पा वेखे सब तू है जिन जग तू पाया। कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा की सच्चा मन वसाया, जी जन सब तुद उपाय एक वेख प्रसन्न आया। लब लोभ अहंकार चूका।

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिथी वालों ने की एक मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समानी, कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराले, जो तू चलाए तिन चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिन चले जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे, जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे, कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिरे चला।

कर्म कमाए सहसे जीव मलिन है कुछ संयम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए कह नाम गुरु प्रसादी सहज उपजे क्यों सहसा उजाए जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यो बिता लिया कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमानी जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सिव की सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आप में समाले आप छाड़े सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जो को गुर के दो मुख होवे।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो हे सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन काहिर लया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा

मान सब रतन है हीरा जित गड़ाओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपे हुकुम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक कस्यो लिवलाए कहे नानक आप करता आपसे हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी सत्य सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी तेही गुणी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया अगन सभी को जे ही करते खेल चाया जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तुम्हें विच माया पाया हर आप अमूलक है मुल न पाया जाए किसे विच्चों रहे लोक विललाए ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमूलक है पाग सुना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मनवन जारा हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्ले न पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुछना लागे आए एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तातू जग में आया हर जोत रखी तुझ विच तातू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया।

हर मंगल गांव सती गृह मंदिर बनया, हर गांव मंगल सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सपागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर सब ज्ञानी।

तब मैं आए क्या क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया। जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने आ लिया। यो विश्व संसार तुम देख दे यो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुरु प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है, हर दिन अवर न कोई। कह नानक नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो।

जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा हर तब करे सवास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे, आनंद अनहद बजे बाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत पाई परवार मेरा, मन वेखो कर निर्जास जियो। तुर लिखिया परवाना फिरे नाही, गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया,

साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया अत अमृत प्रिय गूड़ा नाल हो वंदा लेना सकंदा स्वावना।

अपर अपारा कट कट अंतर सोनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोनिया जिसनो राखे सो सच पाखे गुर का शब्द विचार।

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रवत्याये सब किछ पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुनिये कहो नानक कर प्रभ मेरे कै।

उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिये।

आनंद हरख सहज साचे महा मंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली मैला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाद नित उठ गाये संतन कै किल विख सब दोख बिनासन हर नाम जपिय गुरु मंतन कै।

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उधारणो

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुरु चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीसरे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत

सो स्वामी प्रभ रख को अंचल ता कह लाग जियो। पज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो।

रे। बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए छंत।

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर, नानक प्रम पै मिट गए रमण राम परपूर। छंत रुत शिशियर सीत।

संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभु मीत नाद विनोद आनंद कोड प्रै प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम बने चंत।

सुंदर सोहिया वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक संत।

तिन बलिहारणे हर जप उतरे तीर छंत चरण बिराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरे

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया, आपे गुरमुख आपे देवे, आपे अमृत पियाया, एको एक कहे सब कोई हूं मैं।

सुलियो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सरे वैता गतमित पावे आवन जान रहाई एक

कट थाप आप अगोचर तंदे लोई जोग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई नाम विहूणा मुक्त किव होई विण नाम है विरोध शरीर क्यों ना मिले काटे मन पीर वाट वटाऊ।

सह सोताओ नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई और क्या कही है किछ कह न जाई खोजत खोजत अमृत।

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंग।

चार वर एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दै दिस टूंड करे मैं पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तुलावे तोले गुरमुख आवे जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार।

गुण जम पुर जाहे ना तिस एहो ना ओहो है अवगुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ना त्यान है ना तिस धर्म त्यान।

रंग राते बौड़ न पछोताय पब्बे पाले गुरमुख बूजे ता निज करवासा पाये पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा।

आए वन तृण तू डत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक।

अंत न पारावार। राड़े रूड़ा हर जियो सोई, तिस बिन राजा अवर न कोई। राड़े गारुड़ तुम सुनो, हर वसे मन माहे, गुर प्रसादी हर पाये।

पूरी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिए तन काचा बिखार साउ सदाए संच तन दुबदा होए कुआर सचियारी सच संचिया।

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापे।

विद्या सोदय तत लहे, राम नाम लिवलाए, मनमुख विद्या बिकरदा, बिख खटे बिख खाए, मूरख शब्द नाची नहीं, सूझ बूझ नह काए, पांदा गुरुमुख आखिए।

सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ कवन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल जा।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाने सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बिचारो।

एहो मन लाया कित बिद आसा मनसा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाई सार नानक साचा करो विचार। सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर।

गुरबचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लहे नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लहे हुकम बिस्माद हुकम पछाने जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कही है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाये साचे शब्द समाय लिया एक एको सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किछ सूजे।

गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचय वेद विचारी, गुरमुख परचय तरिय तारी, गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचय अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकथ कथे विचार, गुरमुख निभे सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाये शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरमुख तरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सोबाजी, गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यों कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परवृत नरवृत पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द

जोग जुगत सच रह समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड़ पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख

कट कट तेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तारे मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एव मन मन जारा नानक सहजे सचवा पारा गुरमुख बांध्यो सेत विदाते।

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण।

पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाये सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हाँ हो मैं विचों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अग्न मरे सतगुर के पाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वसे सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अग्न निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल सिंगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा, सुख दुख सम कर

पत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक ने चल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग म सुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन

परे सच भाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिय पवजल संसारो। त्रैसत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो। बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए। गुरुमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरे पाग समाए। सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई। नदर करे शब्द कट में वसे, विच्चों परम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी।

पर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हो मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया।

न ग्रासे, रंग न राता, रस नहीं माता, बिन गुर शब्द है जल बल ताता, बिंद न राख्या, शब्द न पाख्या, पवन न पाद्या, सच न अराद्या, अकथ कथा ले सम कर रहे, तो नानक आत्मा

पियो आत्म सुख तारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसे इहो पवना कहां बसे सो शब्द औदू ताको चूके मन का पवना नदर करे ता सतगुर मिले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख हो मैं विचों खोवे तो नानक सहज समावे इहो मन ने चल हृदय वसियले गुरमुख मूल पछाण रहे नाभि पवन कर आसन बैसे गुरमुख खोजत तत लहे सो शब्द निरंतर निज कर आछे त्रिभवन जोत तो शब्द लहे खावे दुख पूख

ना बिकमल स्तंभ न हो तो ता पवन कवन कर सहता, रूप न हो तो रेख न काई ता शब्द कहाँ लिवलाई, रकत बिंद की

जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे बिरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई बिन सतगुर पेटे

हार, गुरमुख मन जीता हो मैं मार, गुरमुख साच रखिया उधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार, गुरमुख दरगह ना आवे हार, गुरमुख मेल मिलाए

पर जमदंड है दूजे पाए पत खोए, हर नाम कदे ना चेत्यो फिर आवन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसे जमदंड ना लागे कोए, नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए। पौड़ी इक अपनी सिक्ति लायन दे सतगुर मत्ती, इक नानो नाऊ बख्शियोन अस्थिर हर शक्ति। पौन पानी बैसंतरो हुकुम करें पगती, इना नो पौ अगला पूरी बनत बनती। सब इको हुकुम वर्तदा मने सुख पाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानई हो मैं छड़े न कोए, गुर प्रसादी हो मैं छूटे जीवन मुक्त सो होए।

पैका संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए जाको नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

खट शब्द समाई श्लोक महला तीजा। मन का झूठा झूठ कमावे माया नो फिरे तपा सदावे पर में फूला सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोखंतर पावे। महला तीजा सो तपा जे ओ तप काले सतगुरु नो मिले शब्द समाले। सतगुरु की सेवा ओ तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी रात दिन।

सच्चा सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर सब।

न कोए, सचो सच वखाने कोए, नानक अगे कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगर, अंदर लाल जवे हरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना, हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित कर। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंप फिरे, ना सत मूंद मुडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना

मिले वडाई, जिस कट पीतर सब दरवे, सब कट मेरे हो सब ना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन, जिसे फुलाई पंध सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिर ही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत मैं रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औ हठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास,

काम पचाता बार मूल न खोजिए कर्माए विदाता मन मुखार मंदर की साहब न जानने तिन्नी जन्म गवाता सब में एक वरदा।

0: कडवही तलबा फौसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आय तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नानका ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे कुछ कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पग तीरा पे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवा पे सब किछ हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला। सहन सरदान दे इंद्र रोआया परशुराम रोवे कर आया अजय सो रोवे पीछा खाए ऐसी दरगह मिले सजाए।

जाए। जब तक सब किछ मन्ने अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी। काया हंस तुर मेल करते लिख पाया, तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किछ आपे आप है।

कोई पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलने गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुर शब्द सुनी जय। चित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई, श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजा।

है कोई जिथे सो वस्त ना जाते ही आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर घर कोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जानिया सच प्रतिये सा सब किस सच्चो सा।

जावे सगल विजोग पौड़ी। मन मुख मोह गुबार है, दूजे पाए बोले, दूजे पाए सदा दुख है, नित नीर विरोले। गुरमुख नाम ते आई है, मच तत कढोले, अंतर प्रगास कट चानना, हर लद्दा तोले। आपके परम पुलाइंदा किस कह न जाई, श्लोक महला दूजा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है,

सब किछ कर ही माए है बड़ पागी लीता, अंदर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपे मेल मिलायन आपे दे बुझाई। श्लोक मैला पहला, वेल पिंगाया कट गुणाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया, लोहा वड्डे दर्जी पारे सुई तागा सीवे, क्यों पत पाती सिक्की।

मत सिर आवे पार पौड़ी। सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्याइन से सच्चे जिन हर खर्च तन पल्ले। भगत सोन गुण गाव दे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले। आपे मेल मिला।

सोई सेवी है सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस है आए पौड़ी। आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन। एक आपे उज्जर पायन एक पगति लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन। नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध।

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजो।

मन तन हुए निहाल बिंदक नगर चाक नौ निज नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई जो तो कर।

जिस दा करता मित्र समखा सवारिया, जिस तू आवे चित सो परवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

मैं अंदर मैल ना उतरे हूँ मैं फिर आवे जावे नींद व्याप्या काम संतापया मुखो हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

बहुता रोहा। व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूरा, मन लागा तुस्मोहा, ठगै सेती ठग रल आया, साथ दे इको जेहा, सत गुर सराफ नगरी विच दो कड़े, ता उगड़ आया लोहा, बहुतेरी थाई।

ना पौड़ी, जिस कैमस्त कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद सब परम पौ पागा, आत्म जिता गुरमति आगम जत पागा, जिसे त्याया

तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक महला पंजवा, छकड़े बाजार सोहन विच व्यापारिये।

खती है। जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है।

नमः हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे हुए सुरन में जूझे बिन दागे पग जाए, साधु हुए सो पगत पछाने हर ले खजाने पाई, कोठरे में

आगे जे मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ धर्म कर उदर परे चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे तू ब्राह्मण मैं काशी जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोस

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जड़हर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा देखिया। मुंदरा मोन दया कर चोली, पत्र का करो विचार रे।

दरबारी। पवन काज सृजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन एक निमकना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी,

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु।

अंदर सोवे पटम बरतान सेज सुखाली बिगसै जियो सो सिमरन तू अंगन पियो जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझको है नमाए सिमर सिमर हर हर मन

तार जागत मुसीहत हौ रे पाई, निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई। रहाओ नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झारे, नालियेर फल से बर पाका मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई, कह कमीर कुल।

आकाश मदे परमियले पंच जना से बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कलाचित मांडियले राव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुमार पुरंदरिये

वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दोए सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो।

आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवय परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया। राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उंट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय। अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजय। असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर तौ न पूजय। मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा।

सार सतगुरु प्रसाद पीड़ा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह राग मन मज्जन करे तुथाई संतो

तैतास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतर थाती जागत रहे सो कभू न सोवे तीन त्रिलोक समाज पलोवे बीज मंत्र लय हृदय रहे मनुआ उल्ट सुन में गए जागत रहे।

मेरे मन जप ऐस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास धरे। रहाओ हर हर नाम जपें आराधें, सेवक पाए

नर नर हरे पंच दोख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड पागी हर नाम ते आवे हर के भगत हरे इनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड़ मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज हरे नक्त महला चौथा राम जप जन रामे नाम रले राम नाम जप्यो गुर बचनी हर तारी हर कृपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरुषोत्तम हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाद पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सब कमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिगसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दियायो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर कदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी खा पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रभु ने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुण।

मिल सल ले सलल समणे जो प्रभ की आसो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारिक कौरिद उस्तत तारो हम करें प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर देवो कर कृपणे।

ले नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन अकथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीरत कल जो

हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिसको हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विष्णु पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आठ पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसारियो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर्व है कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ ना।

जीत हर पज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत हो है पुनीत नानक दास बल बल कीत नट अष्टपदिया महला चौथा को अंकार सतगुर प्रसाद राम मेरे मन तन नाम आधारे खिन पल रह न सकूं बिन सेवा मैं गुरमत नाम समारे रहाओ हर हर हर हर हर मन के

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर, प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उर्धारे। हर हर कथा बनी अति मीठी, जो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, हथी के लोग विकारे। जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अंग साध दिसारे। गुरमत राम नाम तन

बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सिर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कूड़ जम

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गणक उधारे, परस न परस।

तब लग किचना समारे जब कर मंदर आग लगानी कड कूप कदै पनिहारे साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे जैसा रंग दिल सो हो।

के मन श्रद्धा कर हर तारे मेरे प्रभु श्रद्धा भगत मन पावे जन की पै सवारे हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारे अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे बन बन टूट।

कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे, सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खावारे, जो जन चंद्र हास दुखिया, त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जारे, प्रभ को जन अंतर हृद लोचे, प्रभ जन के सांस निहारे, कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे, आपन आप प्रभ ठाकुर, प्रभ आपे शिष्ट सवारे, जन नानक आपे आप सब वरते, कर कृपा आप निस्तारे, नट महला चौथा, राम कर कृपा लेहु उबारे, ज्यों पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी, हर हर लाज निवारे रहाओ, कर कृपा

सत्संगत परम पद पाया पद माखुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब फोकट चार सिंगारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुरु अलक लखारे। नारी पुरुख पुरुख सब नारी सब एको पुरुख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृद अंतर हर जन

शब्द विचारे निज फल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकीरे नाम के कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपार।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणांगति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो।

अवर टहला चूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तज हो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को न मिटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उधार माली गौड़ा मैला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाओ जा कै सिमरन मिटे तंद जा कै सिमरन छूटे बंद जा कै सिमरन मूरख चतुर जा कै सिमरन कुल्हे उदर जा कै सिमरन पौ दुख हरे जा कै सिमरन अपदा टरे जा कै सिमरन मुच्चत पाप जा कै सिमरन नहीं

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे पालन सरन सेंग गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसो दानो चक्की दराहे बहुत उपमा थोर कहे हर अगम अगम अगाध तुहे ऊंच मूचो बहु अपार सिमरत नानक परे।

नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिगसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा धर्म जा कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाई, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड ले हो पौजल बिखमते, जन नानक सब बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांध भगत वछल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा।

बाप मादो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारियले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आयले।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कटकट राम समानारे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे। प्रणवे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासारे। राग मारू मैला पहला कर पहला चौप दे।

नानक शरण तुहारी आ, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है, खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

खेमाए सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विहाए। विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल साहिब सो सलाही है जिन कर देख्या खेल। संजोगी मेलावड़ा इत तन कीते भोग विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू मैला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया। लिख दात जोत वड़े आई मिल माया सुरत गवाई।

कोई किछ खा जाए किछ तर जाए जे बाहुर दुनिया आए सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली सोवे हाथ पौंदी काहे रोवे कर कुमन वाणी पाई पाप पत्थर तरन।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कबहू ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो सनेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना कर।

हवर पला संसार मारू महला पहला एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तारे रहाओ ना एहो तन जले।

इस तन बिन कहो किने परम गत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पैला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्राप तज छोड़ तो अप्यो पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तरट के, साचा वखर जित। मानक मन में मन मारसी, सच न लागे कत, राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत। बाबा साचा साहेब दूर न देख, सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। राव ब्रह्मा विष्ण रिखी मुनि, शंकर इंद तपे पेखारी। माने हुक्म सोहे दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरपुरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनिया तन निगुरिया, गुर निमानिया तू मान। अंदुले मानक गुर पकड़िया, नितानिया तू तान। होम जपा नहीं जानिया, गुरमति साच पछाण। नाम बिना नाही दर टोई, झूठा आवन जान। साचा नाम सलाही है, साचे ते तृप्त होए। ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ना मैला होए। जब लग साहिब मन वसे, तब लग बिघन न होए। नानक सिर दे छुटी है, मन तन साचा सोए। मारू मैला पैला जोगी जुगत नाम निर्मायल, ताके मैल न राती। प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत भी।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुरु बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी राग मारू मैला पहला।

जियो जिसनु साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हों मैं जलिया मनो विसारे जमपुर वज्जे खड़क करारे अब कह कहे नाम न मिली तू सौ जीड़े पारी जियो माया ममता पवे ख्याली जमपुर फासेगा जम जाली हेत के बंधन तोड़ न साके ता जम करे खुआरी जियो ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो मारू मेला तीजा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद जय बैसा ले तय बैसा स्वामी जय पे जय तय जावा सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देहे बसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहो बुरा पला किछ आपस ते जानिया ए सगल विकारा ए फुरमाया खसम का हुआ वर्ते एहो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई आपे खेल करे सब करता।

का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है। तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथी है निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ। एथे नावो पुल्या फिर हथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आंदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा। पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाई रहाओ। ना मैं जात ना पत है ना मैं थ्यो न थाओ शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर्व आप्या जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियो गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा। सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुरपाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा। मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा सा लाही है तिस जेवड अवर न कोए मेरे मन अनदिन त्याए हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू अनदिन गुण गाओ रहाओ। गुरमुख एको जानिए जा सतगुरु देव।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजे गुरसबदी हर रस चाख। सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख। गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख, रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख। तन धरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख, अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख। मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा दह दिस बहुलाख, बिन नामे त्रिग जीव दे।

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दियो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सतगुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा

चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किलविक काटे हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलदिया नाल सखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावे नित हर जप जापे जप हर सुख पावे गुर प्रसादी हर रस आवे जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निर्भव निरंकार सतनाम जग में श्रेष्ठ उत्तम काम दुश्मन दूत जम काल ठे मारो हर सेवक नेर ना जाई जियो जिस ऊपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब में एक निरंजन करता सब कर कर वेखे अपने चलता जिस हर राखे तिस कौन मारे जिस करता आप छड़ाई जियो हौ अंदिन नाम लही करता रे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छड़ाई जियो मारू मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद डर पे तरत आकाश नखत्रा सिर ऊपर अमर करारा पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा एका निरपव बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ दे तार अर देवा डर पे सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पे केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पे अत डर पे तरम राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहे दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया पगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे बिदरदासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे कवन पराद बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजै पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रमेयो बहु पांते अनक

ए विध खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

मान विराते पंच तत्व मिल पयो संजोगा इनमें कवन दुराते जिन रच रचिया पुरख विधाते नाले हो मैं पाई जन्म मरण उसी को है रे ओहा आवे जाई बरन चेहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा पंत नानक जब खेल उजारे तब एक है एक अंकारा।

कौ दौरयो आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घरख नहीं जानियो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले मानियो पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाय पावन पतत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभु को क्यों ना समारसने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुलारियो हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारे हो रहाओ असाद रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू तारे हो प्रभ विसरत महा दुख पायो एहु नानक तत विचारे हो मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आ

सतगुर प्रसाद। प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ, होछा मद चाक होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें एआनथ, तज सारंग तर परम तू पूला, मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ। तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें, हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी, मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मान्या, जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी, ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है, जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग, सो प्रभु डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे, तपत थम गल लाए। रे नर काए परग्रह जाए, कुचल कठोर काम गर्दव तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ, विकार पाथर गले बांधे। निंद पोट सिराए, महासागर समुद्र लंगना, पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो, नेत्र रखे विराए। शीश उठावन न कबहू मिले, महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत, सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा, जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए, त्याए हर जियो हो।

आया था। अनुपौ अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तें अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूजी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक पर

ताओ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने कयो परगास, काती देरी पगे ते गुर की नी बंद खलास, आवन जान रहे हो कपत कराहा बुझ गया, गुर सीतल नाम दियो रहा,

सत थान सच बैठता सच स्वाव बनाया सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया मारू मेला पंजवा।

आओ रूप रंग खुशियाँ मन भोगण चेते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूड़े रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसे गीता के, साध संग पै जन्म के, गत पाई नानक नगर नहलिया, मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सो, जाते देखा जात न को, मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए, चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ता कै बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठमूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत इकेला जात इकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जाए।

प्रभु विसरत नरक में पाया, तें मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिसको होत कृपाल स्वामी, सोजन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभु

प्रेम भगत हो वत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया मां अगन ते आप उबारिया जप तप संजम इस्ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम दे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवा कत कौ डह का।

आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई, अपने को कृपा करियो इस नाम से आई, नानक दीन नाम मांगे है जितिया परम चुकाई, मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अकपा।

जो अवर न कोई जीवन प्रताल समा है होशी आहे दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतत उदाहरण तारण बल बल बले बल जाय ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि किछ कह न जाई, जाको नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो, राव अवगत सो मानिया मानो, गुरमुख तत् ज्ञानो तिरखत सगल सियानो, तजियो मन ते अभिमानो। नेचल तिनका ठाणा, गुर ते महल पछाणा, आन दिन गुर मिल जागे, हर की सेवा लागे। पूरन तृप्त अघाए, सह समाज सुभाए, हर पंडार हाथ आया।

छोड़ सगल सियाणपा मिल साद त्याग गुमान और सब कुछ मिथ्या रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम। राव दुख दीन ना पाओ ब्यापे मिले सुख विश्राम। गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने। मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे। राव देख छाया जैसे बिन सत पवन चूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक। तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा। पुरख पूरन सुखे दाता संग बत्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन न सीत। मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत। रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपे तिसीद। नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद। मारू मैला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

सोड सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ।

हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमाएड़े जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे परहारे उरद मुख महा गुबारे सास सास समाले सोई उठे खत्म छड़ाए लया विचों गर्भ निकल आया।

रूप प्रदान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण अदारा।

हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उद्रियो गनताहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरो करुणा में अपनी तैग बढ़ाई। जे नर जस कृपा निदगायो ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहा होत अब कह पछताए छूटत नाहिं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुराग्यो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो मारू अस्पदिया मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सच्ची रख बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्म

तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी, नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ। हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा, गुरपूरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा, अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा, जल दिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना, गुरमति जग मथी है अमृत पाये नाम निदाना, मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना, हौ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार, गुर कै सबदे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार, गुरमति जग जीवन मन वसै।

साची संगत थान सचे, सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सचे, सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया, सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया, दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा, मानस दात न हो वही तू दाता सारा, अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा, गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा, नानक मेल न चूकई साचे वापारा, मारू मैला पहला बिख बोयथा लादिया दिया समुंद मंझार, कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार, वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल, बाबा जग पाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ, सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार, तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार, तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार, गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए, आवा गौण निवारया ज्योति ज्योत मिलाए, गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए, सप पिड़ाई पाए विख अंतर मन रोस, पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोस, गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख, मागर मच्छ पाए कुंडी जाल बताए, गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए, जम्मन मरण न सुजई कीर्त न मेटा जाए, हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए, जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए, तंदे तामत जग बांदिया ना बूझे विचार, जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार, गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उडे ताई कावार, गुर मिले खत्म पछाणी है कहो नानक मोख द्वार, मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ, जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ, मारे राखे एक तू बीजो ना ही खाओ, बाबा मैं कुचील काचो मत हीन, नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ, अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ, सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे, जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए, जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार, आगे पाछे

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दासा को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नदरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू तूप, गीत साध चाखे

गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए। सोइना रूपा सब तात है माटी रल जाई, बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई। नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई। मारू मैला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे की रह। तेहो मन अवगुण बांधया सहो देह शरीर है। पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है। क्यों रही है उच्चरणा बुद्ध शब्द विचारा, जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहाओ। जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ, जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ। मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ, कीता स्यासा लाई है कर देखे सोई। जिनकी आसो मनोसे मैं अवर न कोई, सो साचा सालाई है साची पत होई। पंडित पढ़ न पहुंचई बहु आल जंजाला, पाप पुन दे संग में खुद।

दोहागनी सावरने क्यों जाओ, मैं गल औगण मुठड़ी दिन फिर चूर मराओ, तेयड़े तिर समला सावरने करवास, सुख संबंध सुहागनी तिर पाया गुणतास, लेफ निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए, तिर मुत्ती दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए, किती चखों साजड़े किती वेश करे हो, फिर बिन जोबन बाद गयम।

तो सौ रंग रवंत सबे रुति चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुची लिस दे हो पत्तन पूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वनंजिया से सच्चे प्रवनाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो।

आने जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुर के शब्द बिचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विच्चों दुरमत होवे। रंग सो नित्र

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए आपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंद कमावे वेखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नाम है को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत नाम।

कार्तिजा अष्टपदियां इको ओंकार सतगुरु प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या तू उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को स्थान मीत साजन

कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार दी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सुसंतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा शस्त्र तीखन काट डार्यो मन ना की नो रोस काज ओआ को ले सवार्यो तिल ना दी नो दोस मन मेरे राम रो नितनीत दयाल देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर महासागर नह व्यापै खिने उतर्यो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन ना पयो बिखाद शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान जहां सा किछ तहां लागयो तिल ना शंका मान सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए आप पर का कछ ना जाने सदा सहज सुभाए चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद चांदना चांदना।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुरते मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुरचरणी मन लागना, ए विद तिसे प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीक।

हर जस श्रवण सुनाम ना रहाओ। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासे, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासे, दुर्मत दुख सजावना। दर्शन पेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना। नौ निद्रिद सिद्ध पाई, जो तुमरे मन पावना। संत बिना मैं थाओ न कोई, हवर न सूजे जावना। मोहे निर्गुण को कोई न राखे, संता संग समावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मध्य हर हर रामना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन, हर जप जप सद जीवना रहाओ। पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागे, संतोख सदा तृप्त जीवना। पहनना रख पत परमेश्वर, फिर नांगे नहीं थीवना। पोगना मन मदे हर रस, संत संगत में लीवना। बिन तागे बिन सुई आनी, मन हर पगती संग सीवना। मात्या हर रस में राते, तिस बहुड़ न कबहू औखीवना। मिलियो तिस सर्व निधाना, प्रभ कृपाल जिस दीवना। सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार। सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता। दोहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सुहेला पालिए। ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा। देही में जो रह अलिप्ता, तिस जन की पूरन कालिए। जागत सूता परम विगूता, बिन गुरु मुक्त ना होई है मीता। साध संग टूटे हो बंधन, एको एक निहालिए। कर्म करे ता बंदा, ने करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने। कट कट राम हे आलिए। संसारे में सहसा व्यापे, अकत कथा अगोचर नहीं जापे। जिसे बुझाए सोई बूझे, ओ बालक वांगी पालिए। छोड़ बह तो छूटे नाही, जो संचे तो पौ मन माही। किस ही में जिसकी पत राखे, तिस साधु चोर टालिए। जो सूरा तिस ही होई मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना। नानक के पूरन सुख दाते, तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त उदोत पया उठ चले, ज्यो ज्यो औद विहानिया। पाप करेंदड़ सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे। दो जग पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणिया। संग न कोई पया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वजे सा। करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यो कानिया। खुश खुश लेंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे।

संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यो पावे त्यो राखो रहना, तुम स्यो क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाय पतीना।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगढ़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम सं

सबद सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है, कोई न मेटे साचे लेख है, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आए है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने स्यों लूजे, जो तुद सेवे से तुद ही जे, निरपव बाल सखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद ना जाता, ना किस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर, पाए मिले पहु जाई है, पूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना कमाई, पर पुरतार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या साला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है।

पूंजी साथ सच्चे गुण गावा, मैं तर होर न काई है, जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखूं लिवलाई है, मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, दिन फिर नींद न पाई है, अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तक के कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ वडाई है, काम क्रोध अंकार निवारे, सत्सर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे, मन सामन है समाई है, माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है, तुझ ही किया जमन मरना, गुर ते समझ पड़ी क्या

तावत राखे ठाक रहाया, कमल बिगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन संदे लाया, सच्चे ऊपर

सच नाम सच्ची वडियाई सच है तखत वडाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे ना

कर्म तर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अपतीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करतारे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपौ मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कहे प्रभ जाचे, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा, शब्द पति जय अलख।

लिव गुरमत जाती मनमुख सोए रहे से लूटे गुरमुख साबत पाई है कूड़े आवे कूड़े जावे कूड़े राती कूड़ कमावे शब्द मिले से दरगह पैदे गुरमुख सुरत समाई है कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी जो वाड़ी ओजार उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बिस्तर दुख पाई है भोजन साच मिले।

परब न जाए। पच पच मोए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है, प्रभ की गत मित कोए न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे, साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है, वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है, एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तख्त सो

संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिव लाई है, मारू मैला पैला, केते जुग वरते गुबारे, ताड़ी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यो तिस पाना तिवै चलाए, तिसे सरीक न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग चतवारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवासा पाया, एक विश्व

होई बिन गुर बजर कपाट न फूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन सीजे देही राम न जपई अंत स्नेही नाम विसार चले मुँह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए पेयड़े सिर मारा है खाजे पैजे रली करीजे।

पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आंख न चले सच खरा सच आरा है साच बिना दर्श जय न कोई साच शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल समाले सो अंतर दाना बीना है गुर सर्वर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किनेही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुर दाता मुक्त कराए सब रोग दवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

चौरासी नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परा।

हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है।

दुख कनेरे, नरक पचे अज्ञान अंधेरे, कर्म राय की बाकी लीजे, दिन हर का नाम विसारा है, सूरज तपे अगन बिख चाला, अपत पशु मन मुख बेताला, आशा मनसा कूर कमावे, रोग बुरा बुरे आ रहा है, मस्तक पार कलर सिर पारा, क्यों कर पव जल लंगस पारा, सतगुरु बोहित आप जुगादी, राम नाम निस्तारा है, पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा, माया मोह पसरिया पासारा, जम के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत् विचारा है, कूड़ मुठी चाले बहुराही, मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही, अमृत नाम गुरु वरदाना, नाम जपो सुख सारा है, सत गुर तुठा थच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए, कंडा पाए ना गडई मूले, जिस सतगुर राखण हारा है, खेहू खेर ले तन छीजे, मन मुख पाखर फैल न पीजे, करण पलाव करे बहुतेरे, नरक सुर्ग अवतार।

कूकर कूकर कहिए कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है। राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर

राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे। राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत् विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर जीठा। ऐनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो। अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सतगुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। जिसको सतगुरु मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, किस में राम रतन लैचीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुरु शरणाई। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुरु संगत के हो निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनस निंदा करे अनेका। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मूके। बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार असारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आ

मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुरते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो। साकत मूड अचेत ना चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। हों में ममता करदा आया, आसा मनसा बंद चलाया। मेरी मेरी करत क्या ले चाले, बिखला दे छार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती।

तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल।

आला कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला साकत दुर्मत डूबे दाजे गुर राखे हर लिव राता है अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा तिन में पंच तत्व करवासा सतगुर शब्द रहे रंग राता।

चोर मुहे कर मंदर इन साकत दूत ना जाता है। दुंदर दूत पूत पिहाले किंचो तान करें बेताले शब्द सुरत बिन आ

जम कंकर काल पर आता है, जम दर बांधे मिले सजाई, तिस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिल लावे, जो कुंडी मीन पर आता है, साकत फांसी पड़े इकेला, जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुरु बाज न बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलले सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की पगत करे क्या प्राणी, ब्रह्मे इंद्र महेश ना जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन्न, एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता।

मन मन सामार समाता है सतगुर सेवे से प्रधाना तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजे जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे जिन कर चतर तरे विचारे आपके करता कर कर वे

बिन मुक्त न होई, सच नाम जप लाहा है, पढ़े मन मुख पर विद नहीं जाना, नाम न बूझे परम पुलाना, लेके वड्डी देन उगाही।

सच पराख है, जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरुमुख सब सलाहा है। सुन सुन आखे कीर्ति बाणी, सुन कही है को अंत न जाने, जा को अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे ते सर पर मरना, कृत पया सिर सहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए, दुख सुख ही

पखर जिस तन पल्ले शब्द सचे ओ महा है। काकी सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभु पावे पूंजी साबत रात सलामत यूका जम का फाहा है। सबको बोले आपन पाने मनमुख दूजे बोल न जाने अंदले कीमत अंदली बोली आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना।

डाल छोड़ तत्मूल पराता मनसाचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है, और न कथने सिर्फ सजा।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे रे प्रवाह अखुट पंडार है। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएगा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएगा जेती है तेती तुद अंदर देखे आप बैठ बिज मंदर नानक साच कह बेनंती हर दर्शन सुख पाएगा मारू महला पहला दर्शन।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाय पाणे सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, विन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपो सबद गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, किन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत, सबद पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे सबद प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, गुरों विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति।

ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएंदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएंदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा

मसाई कहा जी रैयत राव न हो मैं दुनिया ना तो कहन कहाएंदा पाओ न पलती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पत

पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख किसे बुझाएंदा, नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिरसते आएंदा, आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा, प्रेम पदार्थ ले अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे, सच्चो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर हृदय मिलाए, गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा, हुकमे आया हुकम समाया, हुकमे दीसे जगत उपाया, हुकमे सुर्ग मच पयाला, हुकमे कला रहाएदा, हुकमे तरती तौल सिर पारंग, हुकमे पौन पानी गैनारंग, हुकमे शिव शक्ति करवासा, हुकमे खेल खिलाएदा, हुकमे आडाने आगासी, हुकमे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएंदा, हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणित अपारा, माने हुक्म सो दरगह पैजे, साथ मिलाए समाएंदा, हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएंदा, काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएंदा, सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएंदा, मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएंदा, कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अगन पानी जियो ज्योत कुमारी, सुनने कला रहाएंदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएंदा, सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन न पाएंदा, सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएंदा, सुनो तरत आकाश उपाए, बिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा, सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सुर करते, विस्माद शब्द देखाएंदा, सुनो रात दिन सुदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा, साम वेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा, सुनो सपत पताल उपाय, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर, सब तेरो किया कमाएंदा, राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराएंदा, सुनो उपजे दस अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाएंदा, गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएंदा, पंच तत् सुनो परिगासा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुरु पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएंदा, इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो

अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग तिस की छाया जिस बाप न माया ना तिस पैन ना प्राव कमाया ना तिस ओपत खपत पुल जाती ओ अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सब संतोख शब्द अपशीतल सहज पाए लिवलाया त्रैवरताए चौथे करवासा काल विकाल किए इक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत हर

किया, आत्म राम पाए सुख किया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब रसाल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, कर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सोजी होई, काया गर महल मैली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी, सेवक पंच नाही बिचाखी, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया, सखत सलाम होवे दिन राती, क्यों साथ वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया, मारू मैला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुरु सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजे शब्द जगाया, तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवारे जन के काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर स्थान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसें प्रदान।

महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया, नामन चले न पौन उड़ावे, योगी शब्द अनाहद वावे, पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभा।

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोज सवाया, आपे साव आपे वन

कट कट रव रहा बनवारी पुरख अतीत वसै ने केवल गुर पुरख है पुरख मिलाया सब दाना बीना गर्भ गवाए दूजा मेटे एक दिखाए आसा माए निरालम जोनी अकल निरंजन गाया हौ मैं मेट शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत्संगत सच फल पाया मारू मैला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा मन हर जप पार लंगाया हो मैं ममता लोभ विनाशन नौ दर मुक्ते दसवें आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिन आपे आप उपाया गुरमत ले वो हर लिव तरिये अकल गाये जमते क्या डरिये जत जत देखो तत तत तुम ही अवर ना दुतिया गाया सच हर नाम सच है सरना सच गुर शब्द जिते लग तरना अकत कथ है देखे अपरंपर सुन गर्व ना जो नी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन पव जल जाए न तरिया एहो समुंद अथा मां बिक परिया रह अतीत गुरमतले ऊपर हर निरपो कह कर पाया झूठी जग हित की चतराई बिलम न लागे आवे जाई नाम विसार चले अभिमानी उपजे बिन खपाया उपजे बिन से बंधन बंदे हो मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये बिन गुर राम नाम क्यों त्याये गुरमत ले हो तरो पग जुतर मुक्त पहे सुख पाया गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे गुरमत सायर पाहन तारे गुरमत ले हो परम पद पाये नानक गुर परम चुकाया गुरमत ले हो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मुरारी जम के फाहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत अगन निवार समाई मनमुख नाम जपो जग जीवन रिद अंतर अलख लखाया गुरमुख बूजे शब्द पति जय उस्तत निंदा किसकी की जय चीनो आप जपो जगदीशर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मंड खंड को जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट पोगे पोगन हारा रह अतीत सवाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊंचा श्रवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया मारू मेला पहला काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोभ तज हो निचिंदा।

पाया नित दामन जो चमक चंदायन देखे ऐनस ज्योत निरंतर देखे आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरपुर देखाया सतगुर मिलो आपे प्रवतारे सत कर सूर दीपक गहनारे देख अदिष्ट रहो लिव लागी सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए अनपौ पद पावे आप गवाए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दी जय हर जपिए अंत न पाया अंतर नाम प्राप्त हीरा हर जपते मन मन से तीरा दुकट काटे पौ पंजन पाये बाहुर जन्म न जाया भगत हेत गुर सब तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सवाया जिन जप जपियो सतगुर मत वाके जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल पार कराया ये पौजल जगत शब्द गुर तरिये अंतर की दुबदा अंतर जरिये पंच बाण ले जम को मारे गगन अंतर तनक चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये शब्द सुरत बिन आये जाये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पाग मिलाया निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुरु गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुरु शब्द निरंजन पाया निरपौ को सिर नाही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संभो नानक गुरमत सो पाया अंतर की जब सतगुर जाने सो निरपौ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अंत न मन डोलाया निरपौ सो अब अंतर वसया एनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जब संगत पाये हर सहजे सहज मिलाया अंतर बार सो प्रभ जाने रह अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्ब तिहु लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू मैला पहला कुदरत करने हार अपारा कीते का नाही क्यों चारा जी उपाय रिजक दे आपे सिर सिर हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़े किस आखां दूरे गुप्त प्रगट हर कट कट देखो वर्ते काक सबाया जिसको मेले सुर समाए गुर शब्दी हर नाम ते आए अनद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया मन तन तन ते नाम प्यारा अंत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेवो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर के हर दर गए जस गाया सत गुर मिले ता महल बुलाए साची दर गए गत पत पाए साकत ठोर नाई हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सत गुर समुंद अथाहा पावो नाम रतन तन लाहा विख्या मल जाए अमृत सरनावो गुर सर संतोख पाया सतगुर से वो संत न की जय आशा माह निराश रही जय संसार दुख बिना सन से वो फिर बहुर रोग न लाया साचे पावे तिस वडी आए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुर मूरत एका वर्त है नानक हर गुर पाया वाच्य है पुस्तक वेद पुराना इक बह सुने सुनावे काना अजदर कपट कहो क्यों खुले बिन सतगुर तत न पाया करें विपूत लगावे पस में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड की ने जोग न पाये बिन सतगुर अलख न पाया तीरथ वर्त नेम करें उदियाना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुर परम न जाया न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पाखंड धर्म प्रीत

नानक आत्म राम सभाया। गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाय, कर कर वेखे अपनी वड्याई। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा। आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले देवड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई। मनमुख बहुत फिरे दिलांदी, दूजे पाए खुआई है। हौ मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई। गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अंतर प्यार पगति राता, सहज मते बन आई है। दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है। आपे गुरुमुख।

जने संसारा जल जल खपे बहुत विकारा मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई है सतगुर सेवन सेवड पागी साचे नाम सदा लिव लागी अंतर नाम रविया ने केवल कृष्णा शब्द बुझाई है सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरले किने पछाणी सच्चे शब्द रते बैरागी आवन जान रहाई है शब्द बुझे सो मैल चुकाए निर्मल नाम वसे मन आए सतगुर अपना सद ही सेवे हो मैं विच्चों जाई है गुर ते बूझे तांदर सूझे नाम विहूणा कत कत लूझे सतगुर सेवे की वड्याई कृष्णा फूक गवाई है आपे आप मिले ता बूझे ज्ञान विहूणा किछु न सूझे गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द वजाई है जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वरतै सब सोई, गुरमुख किरला बूझै कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौ मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, हम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

जय अंग दिन नाम रवे दिन राति मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजह है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरथा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई जे सो तो मैं ता मैल न जाई सबर तो पै ता अच्छी हो वै फिर मैली मूल

काया संगारे मर मर जम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रसा कह सच सोई है। हम मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हो होर ना जाना सहजे हुए सो होई है। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हो मैं सब देखोई है। आपे गुण दाते

है। सात से ते पत होए है मारू महला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रसी गुण गावे। दर साचे पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मनमुख निंदक पत

मन पीवे पाए सुवाई है। पर पंडित अवरा समझाए पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के साथ न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुँच है जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, ज्यों पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जम मैं दूजा पाया, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है। जो तिस पावे सोई करसी, आपो हुआ ना किछ होसी।

गुर कै शब्द सदा जन सो है, नाम रसायन इव मन मोह है, माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमति हर नाम पी जय है, सब नाम विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मार सदा सुख पाया, नाय साचे अमृत पी जय है, किलविक दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किश आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जय है, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जय है, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जय हे, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जय हे, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी, त्रैगुण बद्धक मुक्त निरारी, गुरमुख ज्ञान एको है जाता, अंदिन नाम रवि जय हे, वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आँख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पी जय हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई।

सच्चे सच्चा सत्र चाया निज कर वस्या तिथे मोह न माया सद ही साथ वस्या कट अंतर गुरमुख करनी सारी है सच्चा सौदा सचवा पारा ना तिथे परम ना दूजा पसारा सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे बूझे कोई चारी है सच्चे लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड़

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जा सुद पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखाने वारी है, माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन्ही चीना, गुरमुख हो वै सो सच कमावे, साची करनी सारी है, कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है, सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुरु दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है, साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो सेवे सच त्यावे, सच रते विचारी है, गुर की सेवा मीठी लागी, आम दिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होवा, गुर की सेव प्यारी है, से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उबरे, होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रव्या सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है, हूँ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया, गुर साचे ते साच कमावे, साचे दुख निवारी है, जा तू देह सदा सुख पाए, साचे सब दे साच कमाए, अंदर साचा मन तन साचा।

तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्ते एक प्रछन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है हम गुण ना ही क्या बोले बोले तू सब ना देखे तो

गुण में एक को निर्मल साचा, गुर कह सबद पछाता है। जह देखा तह एक को सोई, दूजी दुर्मत सब देखोई। एक कस में प्रभ एक समाना, अपने रंग सदराता है।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब तो जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद, ए मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरमुख एक

आपे करता सब जिस करना, जी जंग सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्त सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा, आपे बसे सब।

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै सबदे मोख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आ गए, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाने हर गुण गाए, सब किल विकाटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हो मैं मेरा ठाक रहा है, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभु निर्मल अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरुमत बूझे कर विचारा, हो मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हम मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख परे शब्द न बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वरताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करे पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे श्रिष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुरु सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदिर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाई, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुणदाता, लेखा कोई न मंगैता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुकम अपारा, मन मुख हुकम न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे इकत करयाने, नामे राता सदा बैरागी, नाम रतन मन ताहा है, सब जग में वरते को सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सब सलाहे से जन निर्मल, निज करवासा ताहा है, सदा पगत तेरी शरणाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे।

सच देवो सच समाहा हे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहा हे। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा हे। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा हे। बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा हे। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अफ्रियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

साए। गुरुमुख होवे सो नाम बूजे, काटे दुर्मत साहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अन दिन लैन दे लाहा है। गुरुमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा

प्रभु जय कोई नानक जन नाम सलाहे बिगसे सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा किसदा अंत न पाये पारा वारा गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाह है। सब मैं वरते एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन दीनदार रिजक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत उपाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर साहा पास साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दे शब्द निस्तर है संसारा आपे करता कर कर वेख है दीनदा पास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए गुर कै सबदर ते रंग लाए हर साला है सदा सुखदाता हर

सतगुर पूरा साथ दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्ते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरुमुख जाते, सब दे सेवै सो जंत्रा पै, अन दिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लब लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरसन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, शब्दे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुद नो कोई न जानी, तुद आपे कथि अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन पा

वर्ते अवर नबिया गुर प्रसादी आप पछाणे कमल विकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने होर लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहा है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन हा।

खोजे सब सलाहे बाहर काहे जाहा है, विण चाखे साध किसे ना आया, गुर कै शब्द अमृत की आया, अमृत की अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुर सेवा के सब किछ पाए, हो मैं मेरा आप गवाए, आपसे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्दे सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मल ताहा है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बक्से शब्द मिलाए, परमल वास।

पूरे गुर ते सो जी होई, हर रस पीने सदा ते आयन, गुरमुख शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निध नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम सतगुरु दुआरे, होमे क्रोध शब्द निवारे, सतगुरु सेव सदा सुख पाये, शील संतोख सब ताहा है, हाँ मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया।

सत वखाणे गुरमुख सत सेवै सत्यो सच्चा गुरमुख सबद सुनाएदा गुरमुख होवै सो जी पाए होमै माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम ऊची दर सच्चे हर गुण गाएदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चे नाम सदा लिवलाए जो तिस पावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएदा जा तिस पावै सतगुरु मिलाए जा तिस पावै ता मन वसाए अपने पाणे सदा रंग

गुरुमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो समकर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

सच कमावे गुरमुख निर्मल मैल न लावे नानक नाम रते विचारी नामे नाम समाएदा मारू महला तीजा आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी आपे खाप उठाप निवाजी आपे न्याय करे सब साचा साचे साथ मिलाएदा काया कोट है आकारा माया मोह पसरिया पासारा।

तक अंतर रसना नाम से आएंदा दिसंतर पवे अंतर नहीं पाले माया मोह बद्दा जमकाले जम की फांसी कब होना टूटे दूजे पाए परमाएंदा जब तब संजम होर कोई नाही जब लग गुर का शब्द ना कमाही गुर के शब्द मिलिया सच पाया सच्चे सच समाएंदा काम क्रोध सबल संसारा बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा सतगुरु सेवे से सुख पावे सच्चे शब्द मिलाएंदा पौन पानी है बेसंतर माया मोह वर्त है सब अंतर जिनकी ते जात से पछाणे माया मोह चुकाएंदा एक माया मोह गर्भ व्यापे हो मैं होए रहे हैं आपे जमकाले की खबर ना पाई अंत गया पछताए।

अचनाम सितलाएंदा मारु महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता सुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर की

मूर्ख अंधा तप न पछाणे, आपे करे कराए करता, आपे परम फुलाएंदा, सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठा पे वेखे, गुरमुख आप बुझाएंदा, सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अदम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएंदा, आप निराल मोहर तंदे।

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा, ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेद करे सब साचा, आपे पन कराएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वे सो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटन हारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सह समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाए दा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वै सो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा, अनेक जतन करे इंद्री वस ना होई, काम क्रोध जले सब कोई,

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न तमाए वे परवाहा, जिसनो अपर न सके कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किस करे सो नहीं चो होई, जिस बिन दाता वरना कोई, जिसनो नाम दा

अंतर साज परम सुखाए सत सचै का आपे दाता जिस देवे सो सच पाएदा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएदा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा लेवे जो तिल कानी पीड़ाएदा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएदा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएदा अंदर प्रजास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

मन्ने सोमिले तुदाए। जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराए दा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सबसिष्ट उपाई, जिसनो पाना दे तिस पाए दा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कभू पाए दा, सतगुरु मेले दे वड्याई।

जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही से रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुर कह शब्द सच चित लाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नाम है मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा

जिन्नी नाव पाया सेवड पागी गुर कै शब्द मिलाएगा काया कोट अप अपारा तिस विच बह प्रभ करे विचारा सच्चा न्याओ सचो वापारा निचल वासा पाएगा अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरले किने थान पाया इस साथ निभ है सलाहे सच्चे हर सच्चे।

अंतर पाले, गुर कै सबल हर नजर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर सबदी, नगरी नगर मिलाएगा, वड्डे भाग एवो शरीर पाया, मानस जन्म सब चित लाया, दिन शब्द है सब अंधेरा, गुरमुख किसे बुझाए दा, एक चित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए, ए वेला फिर हाथ न आवे, पद किसे पछताए दा, गुर के शब्द पवित्र शरीरा, किस विच वसे सच गुणी गहीरा, सचो सच वेखे सब थाए, सच सुन मन वसाएंदा, हौ मैं गणत गुर शब्द निवारे, हर जियो हृदय रखो उड़धारे, गुर कै शब्द सदा साला है, मिल साचे सुख पाएंदा, सोचे ते जिस आप चिताए, गुर कै शब्द वसे मन आए, आपे वेखे आपे बूझे, आपे आप समाएंदा, जिन मन विच वठ पाई सोई जाने, गुर कै शब्दे

इहो शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम फुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुखूले मोए बिल्लाए, जिनको नदर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त समाले, हर का नाम त्याय दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

इस बाणी ते हर नाम पाएंदा वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले नाम न चेते बद्दा जमकाले दूजे पाए सदा दुख पाए त्रै गुण परम पुलाएंदा गुरमुख एक स्यों लिवलाए त्रिविध मनसा मने समाए साचे शब्द सदा है मुक्ता माया मोह चुकाएंदा जो तुर राते से हुन राते गुर प्रसादी सहजे माते सतगुर सेव सदा प्रभ पाया आपे आप मिलाएंदा माया मोह परम न पाए दूजे पाए लगा दुख पाए सूहा रंग दिन थोड़े होवे इस जानदे बिलम न लाएंदा इहो मन पै पाए रंगाए इत रंग साचे माहे समाए पूरे पाग को इहो रंग पाए गुरमती रंग चढ़ाएंदा मनमुख बहुत करे अभिमान।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा व्यापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बंत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाह, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्द विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, अन दिन सदा हर पगती राते, इस जग में लाहा पाया, तेरे गुण कहां मैं कहन न जाई, अंत न पारा, कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया, इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौ मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभु तेरी, तू आपे सहज समाया, नाम अमोलक अगम अपारा।

आए तौ शरणाई उभरे करते आपे मेल मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया हऊ मैं विच सब जलै शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी पर

थारे, गुर कै शब्द मरे मन मारे, हौ मैं जाए समाया, आवन जाने परज विगोई, बिन सतगुर थिर कोय न होई, अंतर जोत शब्द सुख वस्या, ज्योति जोत मिलाया, पंच दूत चित में विकारा, माया मोह का इहो पसारा, सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरवारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माहे समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर कै शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग ना व्यापे, सहजे सह समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति जोत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर शब्द ने

सतगुर मन वसिया लिव लाई आप मिलिया जग जीवन दाता। नानक अंक समाई है मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अविनाशी सर्बे रव रहा कटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिसें श्रे वो प्राणी है जा को राख है।

हर हर नाम जिन्हें सदा त्याया, तिन्हें गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी। जन नानक दास।

अगन उपाय ईदन में बांधी सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे करण कारण समरथ अपाहे। खिन में थाप उथापन हारा।

रसक रसक गुण गाई है, खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, पूछ अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसेति आई है, बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार से

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग विलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र।

तान कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

मेरा कट कट पूरन सिर सिरैन मेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहो प्रभु।

सुरत सबद रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे गुरदूर।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु सासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फास है, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए, गुरु का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुरु का सेवक सात संग पाए, गुरु करदा नित जी दाना है, गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगति, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है, गुर मिलिए सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिए ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है, गुर की बाणी सब माए समानी, आप सुनी तें आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है, सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ करे सो

लख चौरासी जोन सबाई मानस को प्रवदी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवे तिस क्या कहिए,

खंड पताल दीप सब लोआ, सब का ले बस आप प्रभ किया। नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल ज्योति सैंत्याएंदा, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानो मानस देहा, जो जल तरंग

तिथे हर त्याय सारंग पानी जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई तिथे हर आप छड़ाएंदा वड्डा साहिब अगमा था क्यों मिलिए प्रभे परवाहा कार सिलक जिस मार्ग पाए सो विच संगत वासा।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाएदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा, तू आपे करता कारण करना, श्रेष्ठ उपाय तरी सब तरना, जन नानक शरण पया हर द्वारे, हर पावे लाज।

सब पासे आनंद मंगल हर चल तमाशे गुण गावे अनहद तुन बाणी तह नानक दास चितारणा आवन जाना सब चलत तुम्हारा।

पैर नाही को बैरी सब एको है पालना। डर चूके बिन से अंधियारे प्रगट पए प्रभु पुरख निरारे। आप छोड़ पए शरणाई जिसका साथ इस कालना। ऐसा को वड पागी आया आठ पहर जिन खसमते आया तिस जन के संग।

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

जय सतगुर साहु भंडार नाम जिस एह रतन तिसे ते पायना जाकी तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरुख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार पराय।

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसों संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संतें संग राखो, इहो नाम दान दे।

सिमरै तरती अर आकाशा, सिमरै चंद सूरज गुण तासा, पौन पानी बै संतर सिमरै, सिमरै सगल उपार जना।

सिद्धैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै वन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन।

परम रुणा। गुरु का शब्द वसै मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया, सो पतवंता जिन

अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या मिना। तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया।

पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पे खारी जन बांछै जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हर

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल तल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही।

हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद तू साहेब हों से

आई अगम अगोचर बेअंत अतोला है ना ही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अतगारा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरुमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभुवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुखपणी, सारंग तार भगवान बीठला, मैं गणत ना आवे सरबंगा, नेह कंटक नेह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पयाल समी

खुद लेप नहीं एक तिलरंगा। एक जी गुण कमन बखाने सहस फनी शेख अंत ना जाने। नवतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फाना।

गए सिमरत नाम अन दिन जागे अनद विनोद करे हर सिमरन तिस माया संग न तालका रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गा।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार जाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद्विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू मेला पंजवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित कारी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्पण तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मेरे साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत बेद वखा।

पूरन पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडपागी, बौड़ न जोनी पावना, जिसनो बिसरे पुरख विधाता, जलता फिरे रहे नितताता, अकिरत कने को रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता, काहू सिरे ना लावना, तार अनग्रो स्वामी मेरे, कट कट वसे सबन कहने रे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जाना है तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

पहला विण गाहक गुण वेची है तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुरु माहे समाए, मोल अमोल ना पाई है वणज ना ली जय हाथ। नानक पूरा तोल है कबो न होवे काट। महला चौथा नाम विहूने परम सह आवे जावे नीत, एक बांदे एक टीलिया एक सुखिए हर प्रीत। नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी, गुर ते ज्ञान पाया अत खड़क करारा। दूजा परम गढ़ कटिया मोह लोभ अंकारा, हर का नाम मन वस्या गुर शब्द विचारा। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा, सब सचो सच वर्तदा सच सृजनहारा। श्लोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार, सत्संगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार। विचो मल कटे अपनी कुला का करे उधार, गुणा की रास संग रहे अवगुण कढे विडार। नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। महला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है, गुर कै शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए। महला चौथा चढ़ बोए थे चाल सौ सागर लहरी दे, थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे। तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान, नानक नदरी पाई है दरगे चले मान। पौड़ी ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई, सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई। सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बने आई, एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई। हर स्यों प्रीत उपजी गुरसो जी पाई। श्लोक महला पहला पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासी है सिफती साचे नाए। महला तीजा आपे करनी कार आप आपे करे रजाए, आपे किसी बख्श ले आपे कार कमाए। नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए। पौड़ी माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चल दिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

जे सतगुर माहि समाए मैला तीजा, मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है, जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जय आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती है, गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जय, गुरु शब्दी कमल विकासी।

मनमाए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया ले ओ, दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे ओ, पिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोय, ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिस जेवड़ अवर ना कोय, तिस सरनाई छूटी है लेखा मंगे न कोय, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे।

नानक जे इव मारिय गुरसबदी विचार इव मन मारिया न मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्ये पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे सो हर शरणाई छुटिए जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला। हुक्म

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे खिन मैं मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे। फिर वेला हथ ना आवई जमका डंड लागे तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदे लागे। श्लोक महला पहला सर्वे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आत कालर ला।

नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निध नाम एक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोय महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल।

तुम मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक ए वह जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक में ला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए। जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए। अंदिन फिरदा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई नै सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदा रहे सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रहे सच्चे।

तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार। नानक हुकम मने सुख पाई है गुर सब जीवी चार पौड़ी अंदर राजा तख्त।

बिसाओ, सब सच्चो सच वर्तदा सदा सच न्याओ, अमृत का रस आया मन वस्या नाओ। श्लोक मैला पहला। हो मैं करी ता तू नाही, तू हो मैं हो नाही, बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे, बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे, सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे, आप गया प्रम पो गया जन्म मरण दुख जाहे, गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे, नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन किसे समाहे। महला तीजा। मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानिए कल युग विच संसार, आप पैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल बिखम संसार पौड़ी, मनमुख अंदर न पालनी मुठे अहमते, चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते, सिमरत सासत न सोधनी मनमुख विगुते, बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते, तत ज्ञान विचारे।

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक तिस शरणागती जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आ

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चह भोग। पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुदे अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

तुध लेप न लगै त्रिण, जिस होवै आप दयाल, तिस लावै सतगुर चरण। तू होर तू पाए न लभई, अब नासे सृष्ट करण।

के सतवंता, जति सती प्रभु निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। जिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देव गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू।

जिस मेलै सतगुरु आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा तृण छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अग्गे शक्ति हारया एव हर पाइया एक विच्चों ही तुद रखया जो सतसंग मिलाइया जल विच्चों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

पौड़ी। जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौ कुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबे पापै, जन्म जन्म की मल उतरे गुर धूड़ी नापै। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपै। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरताया।

अब मजाए खाली को न जानिए तै सकी भाग मथाए जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हों डाडी दर गुण गावद।

जित भुख लै जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना। जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

मन तन अत गुलाल, नानक बिन लावै आलू दिया, जित्ती होर ख्याल पवड़ी। हर जीओ जा तू मेरा मित्र है, ता क्या मैं काड़ा, जिन्नी ठगी जग ठगया, से तुद मार निवाड़ा। गुर भोजन पार लंघाया, जित्ता पावाड़ा, गुरमती सब रस भोगदा, वड्डा आखाड़ा। सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा। जित लाइयन तित्तै लगदियां, नै खिंजो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा, गुर अंदर वाड़ा।

सुख समुआ भोग भूम सबाई को धनी नानक हबो रोग मृतक नाम विहोनिया। महला पंजवा हिकस को तू आए पछाणू भी हिक कर नानक आसड़ी।

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुरसादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आराधा श्लोक डखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निड़ो भी तार नानक तिरस्यो रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुँह जुलाओ तथ नानक तेरी पसंदो हरे उठियो महला पंजवा मेरी मेरी क्या करे पुत्र कलत्र सने।

ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां।

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रुगत समाहे सब सह।

रहा हूँ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई।

नारद वचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई। कह कबीर राम है रम छोटो नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जो लो मनो न तजे विकार। जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा रंग रवो आत्मा राम रहाओ। जटा भसम लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया जाते बिखिया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान। ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया गुर ज्ञान दिया समझाए। अंतर्गत हर

राम उदक दे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

बिन बै अनुभव होए वना हम्बे, सौ दूर देखे ता पौ पवे बैरागी अड़े, हुक्म बूझे ता निर्भो होए वना हम्बे।

हर मुकत चारे सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो अम्बरीक को दियो अभय पद राज भविकन अधिक करयो नवनिध ठाकुर दई सुदामे धुरु अटल अज हूँ न टर्यो भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हर्यो नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

राम निंदा करते जन्म सिरानो कभू न सिमरो राम। कह कबीर से तह नहीं मूर्ख मुगध गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत थोड़ सादत किया। अबल बल तोड़या अचल चल थपया, अघड़ घड़या तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मान्या रहा। अर्ज को अर्जया सरद को सरदया, सलल को सल सम्मान आया। बदत जय देव को रमया, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया।

लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा। धन जो बन का गर्व न की गय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस गय पटके ता दिन कृष्ण बस।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तब ताके हर हर हर न जपस रसना अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म।

ओन बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन करम सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सासो हागन नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने। घड़ी ना बिसरे क्यों घड़ी बिसारी हो बलहारी हो जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हो किसके रा हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे भय पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीरग सुपावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुपाए। हर स्यों प्रीत बनी हर मंदर आवे जा प्रभु पावे। धन उबी गुण सारी घर घर कंत रवे सुहागन हो क्यों कंत विसारी। उन्नव घन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावे। नानक वरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे।

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वह साग बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे सुध बिन अड न मोलो कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हरता मैल पछाना नानक वै साखी प्रभु पावे सुरत शब्द मन माना।

सुख मैली नानक देख जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे धरती दुख सह सोखे अगन पखे अगन रस सोखे मरिये चोखे भीषो किरत नहारे रस फिरे छाया धन ताके टीन लवे मंज पारे। अवगुण बाद चले दुख आ गए सुख तिस साथ संभाले नानक जिसनो यो मन दिया मरण जीवन सब नाले। सावन सरस मना घन वर्ष ऋतु आए मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए। फिर धरनी आवे मरिए हावे दामन चमक डराए सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए। हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे नानक सा सोहागन चंती फिर कै अंक समावे। बादों परम भूली पर जो बन पछतानी जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी। बरसे निज काली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय चवे बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते। मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है मानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभ तै ही जाइए। असुन आओ पिरा साधन झूर मुई सामिली है प्रभु मेले दूजे पाए हुई। झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले। दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा नानक सुन मिलो प्यारे सतगुर पय बसीठा। कतन किरत पया जो प्रभु पाया दीपक सहज बले तत जलाया। दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो धन ओ मा है सरसी अवगुण मारी मरे न सीजै गुण मारी ता मरसी। नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा। मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे। नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने कल्पाने का पाया। गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे। भूख तुखार पड़े वर्ण तृण रस सुख है आवत की नाही मंतन वसे मुखे। मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी। अंडर धीरज सेतज उद्भुज गट गट जोत समानी। दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो। नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो। माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुर पावा सरनावा। गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुन्द समावा। पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता। फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अनदिन रस भया आप गवाया। मन मोह चुकाया जा तुझ पाया कर कृपा घर आओ। बहुते वेच करे फिर बाजो मैली दहा न खाओ। हार डोर रस पाट पटंबर फिर लोड़ी सिंगारी नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी। वेद असमारुती छिती वार भले घड़ी मुरत पर साचे आए सहज मिले। प्रभु मिले प्यारे कारज सारे करता सब विद जाने। जिन सिंगारी तिसे प्यारी।

राखो खेती हर गुरहेती, जागर शोर न लागे। जम मग न जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। राम सास दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख

सच संभालिया एनिस देख बिचारिया, दावत पंच रहे घर जानिया, काम क्रोध बिख मारिया। अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा, नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा। गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम, अनगिन पोर पया साच समानी राम। साच समानी गुरमुख मन पानी, गुरमुख साबत जागे, साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे। प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुख परम भुलानी, नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी। अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम, एको रव रया अवर न दिया राम। रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या, जिन जल था त्रिभुवन घट घट थापया सो प्रभु गुरुमुख जान्या। करण कारण समरथ अपारा त्रिपद मेट समाई, नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई। आवन जान रहे चूका भोला राम, हो मैं मार मिले साचा चोला राम। हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे, ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आपे। तेई अड़ै घर सबद पतिनी सावरड़ै तिर पानी, नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी। सुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल कछो तानी, फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी। फिर छोड़ी सुती अवगन मुती किस दन विदन राते, काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते। उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं।

जमनाती कल घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी, नानक आपे आप पछाने गुरमुख तत् बिचारी। तुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले। गुर अलख लखाया जा तिन पाया जा प्रभ कृपा तारी, जग जीवन दाता पुरुष विदाता सहज मिले बनवारी। नगर करें तू तारे तरिये सच देवो दीन दयाला, प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला। भरपुर तार रहे अत्यारे

चढ़ सवाया अपरम्पर आपे थापो थापे तिस भावे सो होवे नानक मीरा हीरे बेदया गुण कह हार परोवे गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच है राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर न दिसे साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सच दर खोज ले साचा गुरथानो मनमुख ने पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जाप साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आने आराम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समान आराम बहु साध लुबाने किरत कमाने लुसड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सब सारिया, गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम, हाँ सतगुर विटो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम, मेरे अंतर हुए विगास, प्रयो प्रयो सत्य नित चवा राम। प्रयो चवा प्यारे शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन, हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै, मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुर गोपाल ते आई, हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पाथर गुर नाव बिख पव जल कारिये राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए। मैं मूड निस्तारिये राम, हम मूड मुगद किछ मिट नहीं पाई। तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले। हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे। हुण तो शरणागत आए, दया करो रख लेवो हर जियो। हम लागे सतगुरु पाए, गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया। क्यों साथ गिरास विसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया। गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है, सतगुर आगे शीश टेक दियो। जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरया सुहेला। जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले। तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी। हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द, खिन खिन हर नित कवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले, जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, सेवक जन सेवे ते परवान। जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से, जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल्यो सब किया, करते जिन गुरु बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे। हो तिवै चला हमरे हाथ किचना है, जा तू मेले ता हों आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी, सब तिन का लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई, जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर, जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे। हों तिवे चला सुखारी महला चौथा। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम। जिन कै तुर लेख माथ, जिन को तुर हर लिख्या स्वामी। तिन हर हर नाम आरा दिया, तिन के पाप इक निमक सब लाथे। जिन गुरु वचनी हर जापिया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया। तिन देखे हो पया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी, जिन जपिया।

मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी तू थान सनंतर हर एको एक रव्या वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चव्या सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चव्या तू थान सनंतर हर एको एक रव्या तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिन से हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाश गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ट तोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाई ले सब छुटक गया द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुरु पिछे पई जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुरु गोविंद ते आया देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका छाओ थे ओ गवाया कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुरु बचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना
लागा रंग मुरारा, कीमत कही न जाई ठाकुर तेरा महल अपारा। सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना, देहो दर्श नानक बलिहारी जीवड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे, खनिए वंजा दर्शन तेरे, दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे, निमख दृष्ट देख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा, आस प्यासी फिर कह ताई, जो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहिब साओ अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता, प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए, सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए, जाको कृपा करी जगदीशर, तिन साध संग मन जिता, कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु ताक लिया मोह पापी पर्दा, ताक नहारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विदाते, पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का, नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका। केदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन राम नाम नित गाविए रे, अगम अगोचर न जाई हर लख्या, गुरपूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविए रे, सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम ते आविए रे, जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छड़ाविए रे। हर नाम अरादे से तन जन कहिए, तिन मस्तक पाग तुर लिख पाविए रे, तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात दल लाविए रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे, मौको देहो मती जित हर पाविए रे, ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविए रे। केदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत की जय। हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी, प्रिय रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी प्यास बिदानी, अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी, देख दमोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। केदारा महला पंजवा कर कीजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ, राख हो कृपाल। रहाओ अनिक जतन गवन करो, खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारे हो, नह नह हुते बिकराल। शरण बंदन करुणा पते, पाव हरण हर हर हर हरे,
एक तू ही दीन दयाले प्रभ चरण नानक आसरो उदरे प्रम मोह सागर लग संतना पग पाल केदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान नाम प्रीत लागी मन पीतर मांगन कौ हर दान रहाओ सुखदाई पूरन परमेश्वर कर कृपा राखो मान देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक कहो हर कै रंग रागो चरण कमल संग त्यान केदारा मैला पंजवा हर के दर्शन को मन चाहो कर कृपा सत्संग मिलाओ तुम देवो अपनो नाओ रहाओ करो सेवा सतपुरुष प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाओ वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाओ सर्व प्रतपाले सगल संभाले सगलिया तेरी छाओ नानक के प्रभु पुरुष विधाते कट कट तुझे दिखाओ किदारा महला पंजवा प्रिय की प्रीत प्यारी।

फूले कपट तपट बुध तृष्णा जीवों पेख दर सारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेण होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ

महा मद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिखिया रस ओगवत नै निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात किदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना देव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध सरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं बिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ ना

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरुष अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रो आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली जय पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लू।

निंदा दो विवर्जित तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुख संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक परगासिया अंधकार कहनासा। निरपौ पूर रहे परम पादा कह कबीर जनदासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी। संतो बन जिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निधि खेप हमारी। री तलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार

आई। जेते कट अमृत सभी मैं पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवां दर फूले ता मन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी।

राम न जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल न दूरे अनक जतन कर एहो तन राखो, रहे अवस्था पूरे आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ बिकार महामद के बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारथ जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालनी कै देख किस जात ते के पदे अमरयो राम भगत विशेख रहा।

स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत। लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक परवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास। ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना करे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौप दे इको।

विडाणी करे कराए जाने आप, नानक देखै थाप उथाप इको अंकार। सतगुर प्रसाद राग पैरों महला पहला कर दूजा, गुर कै शब्द तरे मुन केते, इंद्रादिक ब्रह्माद तरे सनक सनंदन तपसी जन केते, गुर प्रसादी पार परे पल जल बिन शब्द क्यों तरिये, नाम बिना जग रोग व्यापिया दुबदा डुब डुब मरिये, रहाओ गुर देवा गुर अलख वे।

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना साथ शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो साच शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना इन विद तर तू तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खितरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापक पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द पेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब होना जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने।

राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता। सोजन ऐसा मैं मन पावे, आप मार अपरंपर राता, गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर, रव रहा सच वेशो। साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नाराई, निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरमुख नाम वडाई, सगले दुख मिटे गुर सेवा, नानक नाम सखाई। पैरों महला पहला, हृदय नाम सर्व तन तारण, गुर प्रसादी पाई है, अमर पदार्थ से किरतारथ, सहज ध्यान लिवलाई है। मन रे राम भगत चितलाई है, गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज खेती कर जाइए रहाओ। परम पेद पाओ कभो न छूटत, आवत जात न जानी, बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी। तंदा करत सगली पत खोवस, परम न मिटत गवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंद पसारा। अकुल निरंजन स्यों मन मानिया, मन ही ते मन मुआ, अंतर बाहर एक को जानिया, नानक अवर न दुआ। पैरों मैला पहला, जगन होम पुन तप पूजा, दे दुखी नित दुख सह, राम नाम बिन मुक्त न पावत, मुक्त नाम गुरमुख लह।

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल सिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई वस्त्र छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल फल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म बिन देसो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ न कर मूर्ख दा वारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, काटवद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई, पैरों मैला तीजा।

खाचा फल पाई, रे जन कैसे करो पुकारा, हुक्मे होआ हुक्मे वर्तारा, रहाओ एहो अकार तेरा है तारा, खिन में बिन से करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया, कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए।

कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई पणत नानक करे क्या कोए जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौनिद।

चार हुक्म बुद्ध समान कर्म होवे गुर कृपा करे यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी सब में वसे अतीत अनुरागी कहत नानक जो जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ पैरों महला तीजा। राम नाम जगत निस्तारा पव जल पार उतारण हारा गुरु प्रसादी हर नाम समाल सद ही निभ है तेरे नाल रहाओ नाम नाचे।

सिमरत शास्त्र पणे मुन केते बिन शब्द सुरत न पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई एक आपे काड लय प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए।

जिन ब्रह्मा बिष्णु रुद्र उपाया, नानक ने चल साचा एको ना ओ मरे न जाया। पैरों में लाती जा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सबदी विचारा। हर जियो सत्संगत में लाए नानक तिसनो देव दयाई, जो राम नाम चितलाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवे, जिन हर राख्या उधारा जिन हर का नाम ना गुरमुख जाते।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ता ते रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

का दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया। रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब उच्च पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुख दाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुर जिनी न सेविया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना तुसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय सद वस्या, पाया गुणी निधान, गुर प्रसादी पूरा पाया, चूका मन अभिमान, आपे करता करे कराए, आपे मार्ग पाए, आपे गुरमुख देव आए, नानक नाम समाए, पैरों महला पीजा, मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला, सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला, गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे, रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे, प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए, संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया, हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार, खिन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाकस नखी विदारिया, प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इक्की कुले उड़ारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला तीजा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई, जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने, सबदे मेल मिलाया रहाओ, अन दिन भगत करे दिन राती दुबदा सबदे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई, मूरख दुबदा पने मूल

कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिये सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारिक हर पिता तत्पाली, जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे, तू सबना माहे, तुझ के बाहर कोई नाहे। हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राख्या भावे, इसके नेड़े कोई न जावे, तू जल थल मैयल सब ते भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजू।

हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते, वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याई है, जिन में लिया सतगुरु कृपा तार, पैरों महला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, जिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कौ हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया, ते हर दरगे का डे मारी, ते नर निंदक सोभ न पावे, तिन नख काटे सृजनहारी, हर आप बुलावे आप बोले।

नानक कह कर केवल नाम। पैरों महला पंजवा जेसो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीतना आया। संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ। पात्र को बो नीर पवाया मैं पी गय अदक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया। दिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत ते को न

तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने पैरो महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद पाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभु लिए मिलाए नानक प्रभु शरणागति आए भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आ

वह जीवत बहुर न जोन परमाम रहाओ। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम, राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार, नानक दास को किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरो महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल, हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना।

पहला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का पाना सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पछया आप कमाइन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा कवन बिछया रस माता रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित भी है चित बिगरस पाज रहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मन मुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहं बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पल जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटया आप कहे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरों मेला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए

बल बल जाये जी कट प्रति आए पैरों मेला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिकसन के नित डरता फिरे है निकट अर्थ न पाया बिन सतगुरु।

तब कारा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा, जो पावे त्यों करे निवेरा, द्वितीया नासत इक रहा समाये, राखो पैज नानक शरणाए, पहरों मेला पंजवा, बिन बाजे कैसो नृत्य तारी।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मैला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

बासन रोग पवर बिनसानो, एक रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता। पैरो महला पंजवा, बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया।

जा को सतगुरु दियो नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभु पाए, ताकी रेन बिरला को पाए। हैरो महला पंजवा, चितवत पाप नाल आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुलावन हारे। राच रहा बिरथा व्योहार राओ, एक माया

पूरन होत ना कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरों मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किलवित जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों मेला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर अपार

माता स्वाओ नाम न विसरे संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते श्री प्रधान नानक जा कै नाम निधान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता।

पास हौ बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ जाके कर्तव्य लखे न जाए जाका परवासा सब कट माए।

फिर पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, बिखला का सब तंद पसारे, विरले तीनो नाम आधार रहाओ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख

नाम हमारे गुरु की सेव, गुरपुरै दृढ़ो हर नाम, सबसे उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारे मज्जन स्नान, नाम हमारे पूरन दान, नाम लैत ते सगल पवित्र।

ज्ञान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौ नसे जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप किस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे किस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नुक न आवे ता कह जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रति

अल्लाह कोए, हर हर नाम जपै जन सोए, रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम तिराए हर हर, हर

0: कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुरते मत लई। कहो नानक ताकि पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख

सास गिरास जपो हर हरि पैरो महला पंजवा सबसे ऊंचा जाका नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जिस सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख वसे मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत।

नानक को गुरु कहे दयाल, पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास, मिटे कलेश सुख सहज निवास, जिसे प्राप्त जिस प्राप्त

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत।

नानक सब किछ प्रगटे होए। पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे, सर्व मनोरथ पूरन करने, आठ पैर गावत पग

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरो महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम के रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरो मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मनया।

पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायण तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ पैरों महला पंजवा पै कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्श बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी

ना सुच हर माने, अंतर मेला बाहर नित तोवे, साची दरगे अपनी पत खोवे, माया कारण करे उपाओ कभे न

पंजवा सतगुर अपनी सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ जाका किया सब किछ होए तिसका अमर नामे तय कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिस

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुतरंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक

चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांदे कह आया, नाम बिना नहीं पढ़ो अचार।

रूप दिखाया, पैरों महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हों मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मने समाई, हर जियो कृपा करहु मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे गुरु।

हम मूड मुगद किछ बूझे नाही, तू आपे दे बुझाई, जो तुद पावे सोई करसी, अवर न करना जाए, जगत उपाय तुद तंदे लाया, पूंडी कार कमाई, जन्म पदार्थ जुए हारिया, सबदे सुरत न पाई, मन मुख मरे तिन किछु न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मुए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिवलाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे, नानक तिल

कहो नानक तत्तै तत मिलाया पैरों महला पंजवा कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो तनि गोविंद हमारा वर्ण न साको गुण विस्थारा रहाओ कोट

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पतियाना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत चरी हथ हर हर

राम राजा नौनिद मेरे संपहेत कलत तन तेरे रहाओ आवत संग ना जात।

पहचाना उलट जात कुल दो विसारी सुन सहज मैं बुनत हमारी हमरा चगरा रहा न को पंडित मुला छाडे दो रहाओ बुन बुन आ

पर ईत ऊत की सोजी परे कौन कर्म मेरा कर कर मरे। निज पद ऊपर लागो त्यान राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाओ। मूल द्वारे बंदिया बंद रब ऊपर घे राख्या चंद। पश्चिम द्वारे सूरज तपे मेरा दंड सिर ऊपर बसे।

पैरों कबीर जियो अष्टपदी कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अगम दुर्गम गढ़ रचियो बास जा मैं जोत करे प्रगास बिजली चमकै होए आनंद जिहें पौड़े।

ओत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

तारे फिरें, बासक कोट सेज बिस्तरें, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परें पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

पूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

ताना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिट वे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार। संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सब

लाल, गुरुमुख राम नाम गुण गाए, तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग, बिन गुरु मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध

गुर संग दिखायो राम राय, मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन, गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागण नाहे पेओ, ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ, गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत न पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर मन

गुरमत उत्तम संग साथ, हर नाम रसायन सहज आथ, मत बिसरस रे मन राम बोल, अपरंपर अगम अगोचर गुरुमुख, हर आप तुलाए।

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा।

जीवत मरे आन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोय फल लाए आपे करता करे कराए ज्योति।

मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे पी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे साथ समाले साथ समाए राव हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

दूर, गुर कै शब्द रहा भरपूर, जी जंत की करे प्रतपाल, गुरु प्रसादी सद समाल, दर्शा चै पक्षों कर जाए, नानक नाम बढ़ाई पाए, बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मनते होए, एक को वेखै और न कोए, दूजे लोकी बहुत दुख पाया, सतगुर मैनू एक दिखाया, मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत, ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव, गुर पूछो तुम करो विचार, ता प्रभु साचे लगे प्यार, आप छोड़ होए दासत पाए, तो जग जीवन वसे

जे हर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार हे मन हरिया सहज सुभाए सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेखे सद हजूर छावकणी फूली बन राय गुरमुख बिगते सहज सुभाए अन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विचो झूठ परात पर पंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाई है नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किस करे सोई पर भोग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एक को चेत है फिर जून नावे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम सेवो विच

गुरचै शब्द साच उधार रहाओ। गुरमुख सच भोजन पवित शरीरा, मन निर्मल सदगुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुर प्रसादी साच समाए, साचा सेवो साच पछाणे, गुर कै शब्द हर दर निशाने, दर साच सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब फूले दूजे पत होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाए, माया मोह बहुत दुख पाए, मन मुख अंधे ठौर न पाए, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पा।

पल्ले पाए सो बुझाए जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप वसै।

मन शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद पाई।

देता जापी आदमंत गुण आस विचारी मेरी माए हर जप हर कह लगो पाए रहाओ गुरु प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवावो वैरवाद गुर कृपा की नीचू का अभिमान सहज पाए पाया हर नाम उत्तम ऊंचा शब्द काम नानक बखान है साच नाम बसंत महला तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौल्य पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ता एको जाने चहत नानक हो मैं कहे न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर पे तै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कह शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फले फुलिये राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखे उदारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक यो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरे पाग हर पगत कराए इस मन को बसंत की लगे न सोए ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ यो मन तंदे बांधा कर्म कमाए माया मूठा सदा बिन लाए यो मन छूटे जा सतगुरु पेटे जम काल की फिर आवे ना फेटे ए मन छूटा गुरु लिया छाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए ए जी जंत फूले हर चित लाए इन विद के मन हरिया होए हर हर नाम जपे दिन राती गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ सतगुर पाणी शब्द सुनाए ए जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे जा पे लाए मूल लगे ता सत

ऊट तिना की अकुलिय पाई, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद।

मेरे सब आलस दुख पंज प्रभ पाया। गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए। काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे। जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी। गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी, बसंत हिंडोल मैला चौथा। कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले ता खोजिए मिल ज्योति जोत समानी। माधो साधु जन देव मिलाए।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अदम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल रिख मल परया, मिल संगत कर प्रभ हंसे, रहाओ तुमरा जन जात अव जाता।

हम किए पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्री दे, जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नी दे। हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाये, गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाये। गोविंद जी ओ सत संगत मेल हर त्याय, हौ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाये रहाओ। कर रतन लाल बहु मानक ला दे, मन प्रम्या लह न सकाये, ज्यो ओडा कूप गोज खिन काडे, त्यो सतगुर वस्त लहाये। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाये, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाये। मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाये, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाये। बसंत निंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुनी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेत्या, जम पकरे काल सुलुंज। गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुन्य, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुंज। राव सत संगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज। हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज। हर उस्तत तारो रिद अंतर स्वामी, सत संगत मिल बुद लंज।

पग थारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसे स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरुष अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

तरों टेक सर्व कला प्रभ तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से पनी जिन तू सेव्या सुखी से संत शरण नानक।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभ तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभ लेह निस्तार।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत पत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए गुरपूरे की सदा शरणाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे। दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे। ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुँच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप। अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए। नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती। साकत फिर आवे जावे रहाओ।

संगत पद कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मई अलरव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया,

सहज तुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन बेटे नितरा तो हर नाम रंग रहाओ कर कृपा।

नानक प्रभ कृपा भई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप। सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरणी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप।

सुखदाता जपदे नीत नीत बसंत महला पंजवा हुकम कर कीने निहाल अपने सेवक को पया दयाल गुर पूरे सब पूरा किया अमृत नाम रिद में दिया रहा कर्म कर्म मेरा कछना बिचार्यो बां पत्र पव जल निस्तार्यो प्रभ काट मैल निर्मल करे गुरपूरे की सरणी परे आप कर...

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन बिद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंतकाल न लागे पीर रहाओ, तरम तरम तुम चौपड़ साजो।

उलंघा वे मेरा सतगुरु सुख सहज से ती कर जाते हर आपे खेले आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरुमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया।

क्या है भाणा कहो नानक कह पया द्वारे रख ले वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मैला पन्नवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

क्या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

की गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार।

प्रेम आधार गुर शब्दी बिक प्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तो है नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए अत लुभद लुभानो विकम माए नह अस्थिर दिसे एक

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसे न भावों, नानक हों मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणों मरिए कर तारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर था की

रोग व्यापे कट कट रव रया प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला एक तुकिया मत पसम अंधूले।

गुरु नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मज गुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुरु

तार कर मेहलत चार बहाली, चारे दीवे चौहत दिए एका एका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी।

कर कर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई।

कृष्ण बिदर कर आया, मिलियो सुदामा पावनी तार, सब किछ आगे दालद पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकुर आप रखाई, जे सब साकत करें बखी।

आशा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी।

गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम प्रहार,

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

दो संसार मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईठ मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत बितार।

हरका नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई, वन त्रिन त्रिभवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई, नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न पाई, पंजे बदे महाबली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रहे नाम से आएदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया

सहदेव सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर्म सुन लाग रहा, जागे सुख देओ अर अपूर।

चलो बन जा रहा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, जय जिस तांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवे जूठे जाए भी जूठे, जूठे मरे अभागे।

बैठ पाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

जिन सकल विकल प्रमुख काटे मोर, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुरु का शब्द काटे कोट कर्म, बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार। सतगुरु प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे, चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे, तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, चरण कमल मेरे हीरे बसे, रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरन मांडे, तैसे संत जना राम नाम ना छाडे, गंगा गया गोदावरी

जैसे पंकत त्रुट तुहाकती सर पोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उबजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक बाल इस पर में है सो

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहा भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई पर फूलत, पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे पाग सत्संगत

हारी कृष्णा जलत ना कबहू बूजे जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपाधारी। नानक जिन को नजर भई है तिनकी तै सवारी सारंग महला चौथा हर हर अमृत नाम दिहो प्यारे जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रहाओ जो जन दीन भय गुर आ गए तिनके दुख निवारे अन दिन भगत करे गुर आ गए गुर के शब्द सवारे हृदय नाम अमृत रस रसना रस गावे रस बिचारे गुर प्रसाद अमृत।

मेरा मन राम नाम मन माने, मेरे ही रह सतगुरु प्रीत लगाए, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी,

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनित अनित अनित गुण गावत सुख नारद ब्रह्म।

ہر کے نکت نکت ہر نکت ہی بستے تے ہر کے جن سادو ہر پگات تے ہر کے جن

तेह वाजे पंच शब्द वद पाग मथोरा। तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म हर

अंतर प्यास चात्र की ज्यों जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ। जाको कोई

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ। वैष्णो नाम करत खटकर्मा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान। करें सोम पाक हिरें पर

आन उपाव न को सूजे हरदा सा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले अवगुण मेट तरहा सार महला पंजवा माई तीर रही प्रे बहुत बिरागे।

विनाशी इक साध बचन आगादा आपके आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई कहीं पाकरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सारंग मैला पंजवा मेरे मन बास

पाए। जो जो शरण पर्यो करुणानिध ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहे गवाए। जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत ना जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ, परवृत मार्ग जेता किस हो।

जगदीशें खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक किस पयो प्राप्त जाके लेख मथामा सारंग महला पंजवा हम दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभव नासी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, फले संजोग फले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई। दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन ना रहे बहुविध उमकाई रहाओ। चितवन चितवो

आयो मानस जन्म गुलवाई गर्भ जून छोड़ जो निकसो तौ लागो अनठाही करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाए।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अलक रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहां लुभाइए आन कहो, कीत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गो

लाए मात पिता पाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभु मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साथ समागम।

मोहन काय आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तौ नानक हर संग मिलिया, सारंग महला पन्निवा, अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधुले मानक देखा।

कैसा नानक दृष्ट आयो सर्व ठाई प्राणपति हर समका सारन महला पंजवा मेरा मन एक ही प्रेम मांगे एक आयो सर्व थान देश प्रिय रोम न सम

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर शिव मन माना साध कृपाल दया।

मेरे मन सीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को, रजन सबाई जंगा रहाओ, हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा, ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा, प्रयो अपना गुर बसर दीना, कोगो पोग निसंगा, निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा, सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी, बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रय अंक समानी, रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजा

आया हर भगत पंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तारे छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ कहे अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे ओ कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पर अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिये के दुख सहामा गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन निष्ठ लगे प्रह बोला गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला रहाओ।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अगय अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख उपाय।

पुरपरायो बन आई प्रभ तोहं किल लिख गए मन निर्मल होई है गुर का दे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समर्थो हं। सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलत तमाशा सबहु दूर सबहु ते नेरे अगम अगम कटवासा रहाओ अपूल ना पूले लिखो ना चलावे मता ना करे पचासा सुन में साज संवार बिना है भगत वचल गुण तासा अंधकूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श देख।

पुनीत हृदय हर बस्यो मस्त पुनीत संत दूरावा सर्व निधान नाम हर हर के जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक को गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अनंत बिहावा सारंग महला पन्नवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत पाई न पहुँचे कहाँ कहाँ तू रखा रहा अंधकूप गृह में तिन सिमरियो।

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ। जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया। हौ बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया। सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

और द्वितीय आकाश विराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तारे मेरे माथे सौ नानक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पहला थे सारंग महला पंजवा रे मूड़े आन काहे कत जाए संग मनोहर अमृत है रे फूल फूल बिखाई रहा प्रभ सुंदर चतुर अनूप विदाते शिष्यो रुच नहीं राई मोहन सो बावर मन मोहो तू ठगोरी पाई पयो दयाल कृपाल दुख हरता।

आई, जैसे मात पिताए किस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक।

सुख दाता प्रभु ध्याय रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुख जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद्ध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अवर।

और खुद मुकदीनो जाए पया गुर पैरे समन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे काट सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेरे सारन महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

तब अरोग जब तुम संग बसतो सुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

अपने पै मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुरु।

मिथ्या राज जोवन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या पोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संते की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कछु न सारी अनेक काज अनेक तावरता उर्जो आन जंजारी रहाओ ज्योस चार के दिशे संगी उहा नाही जह भारी तिन स्यों राज मात हित लायो।

कोट जोद ओआ की बात ना पुछिए, ता दरगे बिमान्यो रहाओ। कवन मूल प्राणी का कहिए, कवन रूप दृष्टान्यो,

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पट राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक की राख है नानक को प्रभ जान सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखार प्राण।

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाई है वड भागी, नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग तुम

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम।

निर्भव भय सगल पाव मिटिया, चरण कमल आधार है, गुरु के बचन जपियो नाव नानक, प्रगट पयो संसार है, सारंग महला पंजवा, हर जन छोड़िया सगला आप, ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई, पेख जीवा परताप रहाओ, गुरु उपदेश साध की संगत, विनस्यो सगल संताप, मित्र सत्र पेख समत विचार्यो, सगल संबाखन जाप, तपत बुझी शीतल आघाने, सुन अनहद विषम पै विषमाद, अनद भया नानक मन साचा, पूरन पूरे नाद, सारंग महला पंजवा।

अन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर ना।

आशत फल पाओ सहु नानक लाभ लहा ले चालो सुख से ती कर जाओ सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया उतर गए।

समाए अनद अनद गुण गाया बाँ पकड़ कडली ने अपने गृह अंधकूप से माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

तै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाय।

सच तन बन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कह द्वारे सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बिचारा कमन मूल ते मानव करया।

आवे राम शरण वडपागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकप कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जोरा ते प्रभ।

जियो प्राण आधार तेरा, तूने थावे थाओ सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन, पाये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन, अवर सगल विद उरी, सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन, नेचल हर का नाओ, भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ, अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार, सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या सेखा, प्रभु त्याग आन जो चाहत, ता कह मुख लागे का लेखा, जा कह रास सर्व सुख स्वामी, आन न मानत देखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, बिन जाए अभिमान, सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे

बिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीवन। हर रंग रांग पै मन लाला, राम नाम रस खीवन। ज्यो मीना जल स्यो उर्जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चात्र

मन तन राम को व्योहार, प्रेम भगत गुण गावत गीजे, होहत न संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार, चरण कमल अस्थित रिद अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, कृपा अपनी धार, नाम निधान उचरो नित रसना, नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा, हर के नाम हीन मत थोरी, सिमरत नाहे श्री कर ठाकुर, मिलत अंध दुख कोरी।

होए एकत्र मिलो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिए, तेते बिरथे जाहे। पूरन परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन, तुलना कछु लाहे। चरण कमल नानक मन भेद्यो, चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा, मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा, सिमर

दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले।

आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ। कोट जन्म प्रमतो बहु भांति थित नहीं कठु पाई, पूरा सतगुरु सहज न पेटे।

पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर विस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैनी।

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। सांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार, चरण कमल शरण।

महला पंजवा। पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोविंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे, बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल हुए।

प्रभु त्याए रतन जन्म अपार जीतियो बहुर जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास।

जानो, दुतिया पाओ सब लुहराओ, त्याग गोपाल अवर जो करना, ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो, काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता, बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक।

जोर नानक शरण कृपा निध सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कट धोए जन्म मरण विकार अंकुर।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभु संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर नानक शरण।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग।

तास्यों न्यो लगाई जो दिसे सो सगल विनाशे ज्यो बादर की चाही तज अभिमान शरण संतन गो मुक्त हो है छिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन्म गवा।

जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नावा मन कर कबहू ना हर गुण गायो।

सहज समाद सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, सुद रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी, अनपौ बिसर गए प्रवजाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच ने आला, मन रत नाम रते में केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी, साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक तस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुरु बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अवर्ण

आवा गौण निवार सच राते, साच शब्द मन भाया, सतगुर सेव सदा सुख पाईए, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाणे, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एको जाने, जिसनो नदर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई, सारंग महलाती जा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी, रहाओ, हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर के शब्द पछानिया बहुविध कर्म करें पाई दूजे बिन शब्द बहुरानिया हर नाम नामे सोई जन निर्मल फिर मैला मूल

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान बिना।

का दाता, कट कट पूरन है अलपाता, कट कट पूरन कर विस्थीरन, जल तरंग ज्यों रचन किया, हब रस माने भोग।

सा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थनंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

नाभि वस्त ब्रह्मे अंत न जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया। पौड़ी आपे आप निरंजना, जिन आप उपाया, आपे खेल रचाय उन सब जगत सवाया। त्रै गुण आप सिरजियन।

करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवा।

भगता को नाम आधार है, नामे सुखोई नानक मन तन रव रहा, गुरमुख हर सोई श्लोक महला पहला, नानक तुलने तोल जे जियो पिछे पाये।

जाए मूर्ख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख न जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्द उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख न जापे आख पौड़ी ना ही सुनिए मन रहसिए नामी साथ आई ना ही सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई ना ही सुनिए ना उपजे नामी वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ती आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरिया गुण

नाउ पाईए नानक गुण गावे श्लोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे

पूर बोल बोल पौकना चूका धर्म विचार जिन जीवन दे आपत नहीं मोया मंदी सोए।

सतगुरु के पाणे जो चले हर से पीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला, सच वर्त संतोष।

रूप कितना नाद ना वेद ना गी रस रस तक ना जानंत कितना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल।

वस्त्र पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गनाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया।

न हो गई। नाम वसै मन आए बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस सब सलाहना आपके ले मिलाए महला तीजा जिया अंदर जियो सब।

हर गुरमुख नाम दियाए, दुख पुख काणा सब चुकाए सी, मिहु उठा छे बरलाए, सब तरत पाई हरियावली, अन जमिया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे थाए, हर किसे त्यावो संत जनों, जो अंते ले चलाए, हर कीत पगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख दुख ले जाए, जन नानक तृप्तै गाए गुण, हर दर्शन देहु सुभाए पौड़ी, गुरपूरे की दात नित देवै चढ़े सवाइया, तुस देवै आप दे।

आप छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए महला तीजा। दात जोत सत

गुरबचनी मन मानिया, हर वर नार तई सोहागण, मन तन प्रेम सुखानिया, अवगन त्याग तई बैरागण, अस्थिर वर सोहागरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे, हर प्रभ अपनी कृपा करी, आवन जान ही मन में चले, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागन सच सही, मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया।

ऐसा नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उत ही ते, उत ही मैं समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

प्रीतम जिन हर प्रभ आ मिला रहाओ नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यो हम जिन पगत सुहावी मुक्त पय गुर बरस दिखाया जुग जुग पगत सुभावी हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुरु मिले निरंजन पाया।

गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पट पाई नानक राम नाम रुद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मलार पर दारा पर तन पर लोबा होमे बिछे बिकार दुष्ट पाओ तब निंद पर आई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुरु का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता तिसने राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाये।

सुरता पंडित का कानाओ गुण गोविंद ना जानिए माए अंडीठा कुछ कह न जाए क्या कर आंख बखानिए माए रहाओ ऊपर बर समान प्याल क्यों कर कहीं दो विचार दिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ कथनी बदनी रह निवरात सो बूझे हो जिस बात अंतर है निवलाए।

मानसता तल तब मैं सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटे से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हरन।

हूँ मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करें दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर के शब्द सुभाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा जिस बच्चे तिस बिघन न कोए रहाओ त्रै गुण सबा पात है ना हर भगत ना भाए गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए साहिब पावे सोथी है पये किरत फिराए सतगुरु पेटे मन मर रहे हर नाम वसे मन

मेरा हर पग अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिया सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पी जा, गुरमुख कोई गिरना बूझे, जिसनो

एक को एक वसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हूँ मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बूझे।

दात समझ सुख अंतर सदा निभय तेरे आल राव। मन मुक्ता खंड कभी न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए। ए वेला सुर हाथ नावे अन दिन सदा पछताए मर मर जन्म कदे न बूझे विस्ता मैं समाए। गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याए।

तस बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदुष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द

इहो हुकम कर श्रेष्ठ उपाय। गुर प्रसादी बूजो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे, अन दिन एको नाम वखाणे।

वेद की फिरकूक न होए, मलार न लाती जा। प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई। सतगुरु सेवा जम की काम चुकाई, हर प्रभु मिलिया महल कर पाई। प्राणी गुरुमुख नाम ध्याए, जन्म पदार्थ दुविधा खोया। कौडी बदले जाए रहाओ, कर कृपा गुरुमुख लगे प्यारे। अंतर पग पे हर हर उधार, पव जल शब्द लंघावन हार। दर साचे गुस्से सचार, बहु कर्म करे सतगुरु नहीं पाया। बिन गुरु परम पूले बहु माया, हों मैं ममता दो मोह वधाया। दूजे पाए मन मुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा। गुरु शब्दी जपिए सकलाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा। नानक गुरुमुख नाम समा।

सब लागो पाए हों जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा हर के नाम मुक्त गत पाए रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार मनमुख मोहे मुक्त गवार। हम दिन तंदा तर्क निहाए मरमर जम में मिले सजाए। गुरमुख राम नाम ले लाई पूरे लालच ना लपताई। जो कुछ हो वह सह सुवाए हर रस पी वह रसन रसाए। कोट मदे किसे बुझाई।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कलज गुराम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवी जाए, रहाओ बाबी हाँ खिन खिन दिल लाए, बिन फिर देखे नींद न पाए, यो विछोड़ा सहा न जाए, सतगुरु मिले का मिले सुवाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया पू

सब आशा मनसा बंधन टूटे, हर हर प्रभु कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गारी, हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो, तिस विधवा कर मैं तारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस एनस हर

गुरपुर हूँ मैं तीस तोरी, जन नानक मिले बनवारी, मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई, किलविख मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई, तीरथ असठ मज्जन नाई, सब संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ, जहर नवी तपे पागी रथियानी, केदार था प्यो महसारी, काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई, जितने तीरथ देवी थापे, सब जितने लोचे तूर साधु की ताई, हर का संत मिले।

साधु तूर दे हर पार लंगाई। मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे किसकी भूख दुख सब उतरे, जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे, गुर के बचन करण सुन ध्यावे पव सागर पार करे रहाओ। किस जन के हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करे, हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे, हर जन को हर भूख लगानी।

हर जन हर कार लावे, सतगुर हर हर नाम दिलावे। हर बोलो गुर के सुख मेरे भाई, हर पौजल जगत करावे रहाओ। जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप करावे। कर्म पूले अज्ञानी अंधुले, कम कम फूल तोड़ावे। निर्जीव पूजे मरा सुरेवे, सब दृष्टि काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए, हर हर कथा सुनावे। उस गुर को छादन पूजन पाठ, पतंबर बहु विदे सत कर मुख संचो। किस पुन की फिर कोट ना आवे, सतगुर देव प्रतख हर मुहूर्त। जो अमृत वचन सुनावे, नानक पाग पले किस जन के। जो हर चरणी चित लावे, मल्हार महला।

समाने ओ आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंदिन अंध भया।

तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अंगिन हृदय नाम दिया है, सब जन तिना का सफल भया, वे आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार कया, तुद आपे आप उपाया सब जग।

गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेतें, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहाओ, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध ना बुद्ध भई मत मद्दन, लोभ लहर दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

खोजते बड़भागी, हर का पंख को बतावे हौंपा कह पाए लागी। रहाओ हर हमारो मीत सखाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मनमोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमक पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद क्या तू सोचे, क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय, ताको कहो पर।

खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रह न जाई सार समाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभु दाता फूले बारक अनेक लख बरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी नव निद नाम निधान गृह तेरे मन बांचे सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना नानक बारिक दर्श प्रभु चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरंभियो करका ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी पोर पया मैं प्रेह मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पावन मिलियो भगत करो निर पाए जब त्रय आए।

गुर कारज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोक जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का सी हरते हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमे बहुजोनी एक न काहू तरते।

जरते नानक शरण चरण कमलन की, तुम ना डारो प्रभ करते। राग मलार महला पंजवा, दुख दे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी, हूँ एक खिन तिस बिन रह ना सको। प्रीत हमारी लागी रहाओ, उनके संग मोहे प्रवचित आवे। संत प्रसाद मोहे जागी, सुन उपदेश पहे मन निर्मल। गुण गाए रंग रांगी, एहो मन दे किए संत नीता। कृपाल पे बड़ पागी, महा सुख पाया बर न साको। रेन नानक जन पागी, मलहार महला पंजवा। माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई, सगल सहेली सुख पर सूती। जे कर लाल बसाई रहा।

जो प्रे संग राती एहो मैं की टीठाई कई निमाणी शरण इकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमस में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बिहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बेनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को तेते संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर न कतू धाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मल्हार महला पंजवा बिचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितै उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाओ जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सदा हजूरे नानक रव रहो सब अंतर सर्व रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ग्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जक किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे

अनाथा नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओठ जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई मल्हार महला पंजवा मन मेरे हर के चरण रवीजय दर्श प्यास मेरो मन मोयो हर पंख लगाए मिली जय रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी जय पार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस पी जय त्राहे त्राहे कर सरनी आए जल को कृपा की जय कर गह लिहो दास अपने को नानक अपनों की जय मलार महला पंजवा प्रभ को भगत बछल बिरदायो निंदक मार चरण तल दीने अपनो जस वरतायो रहा।

कार्तिको मेरे स्वामी प्रम्पो में सुखायो महा आनंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग मल्हार महला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसै ब्रह्म प्रसार गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार गुरुमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये गुर उपदेश हर हृदय वस्यो सास गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मनार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभ आत मिलाए, अपने सेवक को ले प्रभ लाए, ताकी कीमत कही न जाए। कर कृपा पूरन सुख दाते, तुमरी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना, हुकुम बूझे सो

दुख पन्ना पे पंजन हार अपने जिया की तीसार राखनहार सदा मेहरबान सदा सदा जाइए कुर्बान काल गवाया करते आप सदा सदा मन किसनो जाप दृष्ट तार राखे सब जंत गुण गावो नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जाने प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बोलाया मलार महला पंजवा गुर सरनाई सगल निधान साची दरगे पाये मान प्रण को दुख दर्द सब जाए साध संग सब हर गुण गाए मन मेरे गुर पूरा सालाए नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाए रहाओ सत गुर जेवड़।

सो मन निर्मल जो गुर संगराची गुरपुरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग मला।

क्यों संग बाजे बजे मृदंग अनाहद कोकिलरी राम नाम बोले मधुर बैन अक्सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभा।

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाहा रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मलार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मलार महला पंजवा बरस सरस आ गया होहे आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

पार उतार मल्हार महला पहला अष्टपदिया कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

लाई शात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिलप करे बिल लाई कान हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजे जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई खिन तिल रह ना सके पल जल बिन मरण जीवन तिस्ताई तनवाडी फिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना का सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रह न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पैखंजन। कागद कोट इहो जग है बपरो, रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे, जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर, सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर, सरपन डसे दूजा मन माही। गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पे सच पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाते, तू सर्व जिया दयाला, तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला। बादी तंद अंग नहीं सूजे, बदिक कर्म कमावे, सतगुर मिले ता सूजस बूजस, सच मन ज्ञान समावे। निर्गुण देह साच बिन काची, मैं पूछो गुर अपना, नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे, बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला, चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे, सारिंग सबद सुहाई, रैन बबीहा बोलियो मेरी माई। रमाओ त्रै स्यो प्रीत न उल्टे कबहू, जो तै पावे साई। नींद गई हो मैं तन फाकी, सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उदो पूखा, पीवा नाम सुवाई। लोचन तार ललता बिललाती।

जुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालन हार, जित कर वसे तू है बिद जाने भी जो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर सबक सिंजापे, एक मूरख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के

एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा, चौदिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालंग, जामन मरना दी से सिर उबो, खुदया निद्रा कालंग, नानक नाम मिले मन भावे, साची नदर रसालंग, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आर फाथी जाल।

कर्म होवे ता सतगुरु पाई, बिन कर्म है पाया ना जाए। सतगुरु मिले है कंचन होई है, जहां हर की होए रजाए। मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुरु ते हर पाई है साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुरु ते ज्ञान उपजे ता ए संसार जाए, सतगुरु ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

शिव कर जमे विचो सकत गवाए अचर चर विवेक बुद्ध पाए पुरख है पुरख मिलाए तातुर बाजी संसार अचेत है चल मूल गवाए लाहा हर सत्य।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सह मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोक्ष द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाणे सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने भाणे मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै

तिस जेवड़ अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लए करम प्राप्त होए। साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए, अमृत वर्षे मन संतोखिए सच रहे निवलाए।

विचार मुक्त कदे ना होवई नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुटही नाम ना लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित।

नानक नामे ही पत उपजे, हर सिउ रहा समाए, मल्हार महला तीजा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे, गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है,

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमक मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्स प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मान।

पाया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया। वार मलार की महला पहला राणे कैलाश तथा मौल दे की तुन इको अंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर मिले मन रहसी है ज्यो उठे तरण सिगार शब्द से हरियावली सर करे सदर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजी ठे लाल कमल विग से सच मन

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर सब

गुरु नानक का सब सुख साचो नाम पौड़ी। आपी ने आप साज आप पछाणिया, अंबर तरत बिछोड़ चंदो आताणिया, गिण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया, सूरज चंद उपाए जोत समाणिया, किए रात दिनंत चोज विलाणिया, तीरथ तरम विचार नावन पुरबाणिया, तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया, सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला। नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए, नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला। नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए, गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए। पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया, बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया, ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया, ना किस बाप न माए किंतु जाया, ना किस रूप न रेख वर्ण सबाया, ना किस पुख प्यास रज्जा ताया, गुर में आप समोए शब्द वरताया, सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला। वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा, होला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दे लाए आप छपाया।

संतै चित करे हो नानक चूर मरे दोहागणी चिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावन आया हे सखी जल हर बरसनहार नानक सुख सावन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी आपे छिंज

मार मूर्ख कच्चिया, आप पैर मारे आप आपकार जचिया, सबना खसम एक है गुरुमुख जानिए, हुक्मी लिखे सिर लेख विन कलम मसवानिए, सत संगत में लाप जिथे हर गुण स्वभाव खानिए, नानक सच्चा शब्द साला है सच पछानिए। श्लोक महला तीजा।

रंग रहा तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख न होए। महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यों मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रह बारिया। मन मुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी ने चौदर गै हारिया गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया।

सब करन पलाह करे पौड़ी। सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार। आदाने आका

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओठे हाथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार ओठे सतगुरु बेली होवे कर ले अंती वार इना जनता नो हो सेवा नहीं सतगुरु सिर करतार। श्लोक महला तीजा बाबी हा जिसनो तू पुकार दा तिसनो लोचे सब कोए अपनी कृपा करके वससी वन तिन हरया होए गुर प्रसादी पाये विरला बूझे कोए बैंदिया उठदिया नित बिहाइए सदा सदा सुख होए नानक अमृत सद ही वस।

आए। सच्चा सुनिया कन दे तीरक देवै सह सुवाए। इंद्र नो फुरमाया बुठा छ बरलाए। अन तन उपजै बहु कणा कीमत कह न जाए। नानक नाम सलाए तू।

लाए, जो जल में कमल अलिप्त है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक समाए।

नानक तिनका आखिया आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार, अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार, नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार।

चार्य गुण में रह समाए, अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए, जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हौ बलिहारी गुरु अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है मन मुख बूझ न पाए। विण नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए, गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किसना वसाए। श्लोक महला तीजा, बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए, इहो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मने तिख उतरे चढ़े चवक गलवन।

नानक गुरमुख तिन सोजी पई, जिन वस्या मन माहे पौड़ी, नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया, गुरमुख नाम प्याए तुझे समाया, जुग शक्ति गुबार तिस ही पाया, जला बिंब असराल तिने वरताया, नील अनील अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया के सिर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया, श्लोक महला तीजा, इहो जल सब कै वरसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवले।

समाए नानक जिन को नदर करे ता इह तन पल्लै पाए पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसों करी पुकार आपे लेखा मंगसी।

सब में एक वर्तदा सिर सिर करे विचार गुरमुख आप विचारी है लगे सच प्यार नानक किसनो आखी है आपे देवनहार श्लोक महला तीजा बाबी हा एहो जगत है मत को परम पुलाए एहो बाबी हा पशु है इसनो बूजन नाहे अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाए नानक गुरमुख जिन पिया तिन बहुर न लागी आए महला तीजा मल्हार शीतल राग है।

गुरु प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा भी परवाह इको तू धनी, तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी। मानस पूरा गर्भ सच्ची तुदमणी, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवाणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए। क्यों जल मेरा जियो है, जल बिन रहन न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असंख मैं गण

संत धामिया दूजे पट खोई, एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई, बिना में बाजारिया तिहावल होई, पूर्ण खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया, औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे, गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान, जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

अब गयार जिस बक्से सो पाए सी गुर सब्दी विचार। श्लोक महला पंजवा। रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ, राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन, नानक जो प्रभु पाया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव सच समा लिया, अंत खलोवा आए जे सतगुर अग्गे कालिया। कोई न सके जमकाल सच्चा रखवा लिया, गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया। मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया, पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया। सबो वर्त सच सच्चे सबर निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा। बादी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए, मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छे बरलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए, नानक सो साल आई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा। चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है, कित पीते तिख जाए। दूजे पाए परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए, नजर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुवाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक वन खंड बैसे जाए सदना दे वही, एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही, एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही। एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही, एक अग्न जला में अंग आप विगो वही। गिणना में तन चार क्या कह रो वही, सोहन खत्म द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा। बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार, मेघनो फुरमान हुआ वर्षो कृपा कार। हो तिन के बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार, नानक नामे सब हरियावली गुर के शब्द विचार। महला तीजा। बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करे पुकार, नदरी सतगुरु पाई है नदरी उपजे प्यार। नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी। एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया, तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ ना आया। हथी सिर खुहाए ना पद कराया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया। तिन जात ना पक ना कर्म जन्म गवाया, मन जूठे वे जात जूठा खाया। बिन शब्द आचार

शब्द मरे मन मार तन जने दी माया दर सच्चे सच्चार सच्चा आया पूछ ना सके कोई जा खसने भाया नानक सच सलाहे लिखिया पाया। श्लोक महला पहला कुल्हा देंदे बावले लेंदे वडे निलज चूहा ठड न मावई तिकल बन्ने छज देन दो आई से मरे जिनको देन से जाहे नानक हुक्म न जा कई किथे जाए समाहे।

मरना जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे तिन पौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू तनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवनहार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमती विचार इक नानो तुद एवे पाउंदा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाहिए अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत न होई विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभु सब तुद सेव दे एक ताड़ी करे पुकार जेहे दान संतोखिया।

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख ना जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला सरम करम दो नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडिया जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर महला पहला।

नानक उठे जानिए सा के पाछा पौड़ी। इकना गली जंजीर बंदर बानी है, बदे छुटे सच सच पछानी है।

गया जानिए कौजल तारण हार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाव अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा कै सुखदारा एना पर्याना।

एक चसे में लख सबको नथे नथिया बक्से तोड़े नथ वरना चेहना बहारा लेके बाद अलख क्यों कथिए क्यों आखिए।

मासो ही मास उपजै मासो सबो साथ सतगुरु मिले हुक्म बुझिए ताको आवे रास आप छुटे न छूटिए नानक बचन विनाश महला पहला मास मास कर मूर्ख चगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंदा मार होम जग किए देवतियां की बाने मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मांस खाने हर कर लोकानो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधेश्यों क्या कही है कहे ना कहे बूझे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस न खाही।

तू है मन भाया पाल चलाए बन, कोई ना रखसी जर जरवाना कन, चरिया नथसी सत गुर बोत बेर सच्चा रखसी, अगन पथे प्रहार अंदिन पक्षी, फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी, करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला।

प्रभु कर्म तन तन पांडा तन मस तन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच महला पहला आपे पत्ती।

रविया सब ठाई जित तू लाहे सचिया तित को लगे नानक गुण गाई सुध राग मलार बाणी।

कालकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सार था ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जा

नागर जना मेरी जात बिखिया चमारंग, हृदय राम गोविंद गुण सारंग राव, सुरसरी सलल कृत बारुणी रे, संत जन तर्क नहीं पानंग, सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी।

सोई सोई फापियो झूठे बनजे उठी गई हापियो कहो रविदास पयो जल लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नवा चौक दे महल।

वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मेरा मन साध जना मिल हरिया हौं बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी हम साध जना पग परिया तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया मिल साधु पत उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद मिल साधु वस वत करिया ज्यों जल तंत पसारियो बगत।

किलबित दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फांस। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध रख

रंग हर के रे कट कट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिखिया के ताक संत जना की बहुत बहुत शोभा जिन उतारियो हर रस रसाक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना में

हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंद पहर साक, कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गड़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम।

गुण गावे गुरमत हो बल बले हो बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सब संगत मिल पज राम बड हो पाग मताम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म किरिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाई हर ब्रह्म जोग हर पाई सतसंगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कपाट तू

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित विकार सुख पाइये हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यों छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यों पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यों काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करें प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। गाये गुण गोपाल कृपा निद दुख विदारण सुख दाते सतगुर जा को पेटत होए।

तिल सुपना जाको सतगुर अपना राखे सो जन हर रस रसना चाखे कहो नानक गुर कीनी मया हालत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पन्नवा आरादो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ, कानड़ा महला पंजवा, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनेक बार कर बंदन संतन, हुआ चरण गोविंद जी के बसना, रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर द्यावो, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा, कृष्ण ना बूझी बहुरंग माया, नाम लेत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जब पहे दयाल, सहु नानक कौ छूटे जंजाल, कानड़ा महला पंजवा, ऐसी मांग गोविंद ते, पहल संतन की।

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार, कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जस सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लायो गुरु प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाज समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब ताक पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु की नो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल।

कानड़ा महला पंजवा करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कथिए संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाई है मां।

महापवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासे रिद पयंत सांत अमृता रस पियो रसना नानक हर रंग

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ। मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कहीं कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई है।

नीच सब पेक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत ऐसो जन बिरलो है।

सोगना ही सदा हरखी है रे, छोड़ना ही किछले तै। कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमते। कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए। तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ। जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए। अनिक पाप की एक कै जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए। काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए। कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे। नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ। नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे। अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे। कहो नानक प्रभु पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे। कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे। पूरे काज बुरु कै फेरो रहाओ। नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कचतेरो। आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो। अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

परोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराचत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाज समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा मेला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरनी लाग। हर पावो मन आगाद जग जीतो हो गुर किरपाद रहाओ। अनक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे हर पावा।

नवनिद नाम निदान हर केर है, हर रंग रंग रंग अनुपेर है, काहे रे मन मोहे मगनेर है, नैनो देख साध दर्शेर है, सो पावे जिस लिखत लिले रह, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाचो तूर पवित्र करे रे, असत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाले।

बरना साकू एक तुलेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर केरे। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खा टंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

यो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए। प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी। सोई मिलियो जो पावतो जन नानक ठाकुर।

उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन कथन।

पतित पावन भगत बचल पै हरन तारन तरन रहाओ नैन तिपते दर्श पेख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोविंद सरन आस पूरन दुख विनाशन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव। जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारों आप बिनस जाए।

ओही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकी शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुलभ जन्म सफल नानक पव उतार पार कानड़ा महला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा।

पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो। नानक पाने अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ

मिल सतगुरु नाम त्यावे गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावे गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवे गो। दिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावे गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावे गो। भगत जना को सदा निव रही है, जन निवे ता फल गुण पावे गो। जो निंदा दुष्ट करे भगता की, हर नाखस जो पत जावे गो। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावे गो। जो जो भगत होए सो पूजो, परमन परम चुकावे गो। जात न जात देख मत परमो, सुख जनक पगी लग।

होए लख कोटि, लख कोटि कोट से आवै गोराओ। सहस फनी जप्यो सेख ना गै, हर जपत्या अंत ना पावे गो। तू अथाओ अत अगम अगम है, मत गुरमत मन ठहरावे गो। जिन तू जप्यो तेई जननी के, हर जप्यो कौ सुख पावे गो। बिदरदासी सुत छोक छोरा, कृष्ण अंक गल लावे गो। जल ते ओ

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैगल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे

नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगर।

सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावै गो। ज्यो गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर सरन

सतगुर शरण पए से थापे, तिन राखन को प्रभ आवे गो। जे को सर संदे जन ऊपर, फिर उल्टो तिसे लगावे गो। हर हर हर हर हर सर सेवे, तिन दरगे मान दिवावे गो। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे, हर गल मिल मेल मिलावे गो। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख, गुर परचय नाम दियावे गो। हर हर रूप हर रूप होवे, हर जन को पूज करावे गो। साकत नर सतगुरु।

लग संगत नाम त्यावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख समावे गो छक्का पहला।

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ पाग दर्शन पाए। मिल साधु नित पजय नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन। गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए। सत संग पाये हर से आये, बहुर दुख ना ला गए। कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन। बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज।

गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन। गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परमा।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया। सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे, हर बोलत सब पाप लहो गया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय। हौ मैं ममता नाथ होए दुर्मत कड्डे धोए। नानक अमदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर।

होए, हर आपे आप वरतदा, हर जेवड अवरना कोए, जो हर प्रभु पावे सो थिए, जो हर प्रभु करे सो होए, कीमत किने न पाया, बेअंत प्रभु हर सोए, नानक गुरमुख हर साल आया, तन मन शीतल होए पौड़ी, सब जोत तेरी जग जीवना, तू कट कट हर रंग रंगना, सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना, एक दाता सब जगत पिखारिया, हर जाते सब मंग मंगना, सेवक ठाकर सब तू है तू है, गुरमति हर चंग चंगना, सब कहो मुखों रिखी केस हरे, जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा, हर हर नाम से आए मन, हर दरगे पावे मान, जो इच्छे सो फल पाए सी, गुर सब दी लगे ध्यान, किल विख पाप सब कटी हैं, होमे चुके गुमान, गुरमुख कमल विगस्या, सब आत्म ब्रह्म पछान, हर हर कृपा।

पौड़ी। तू थान सनंतर परपूर है करते सब तेरी बनत बनावणी, रंग परंग शिष्ट सब साजी, बो बो विद पांच उपावणी।

गुरु मेले मुख गुरु मुख हर समझावणी सब बोलो राम रमो श्री राम रमो जित दालद दुख भुख सब ले जावणी। श्लोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उर्धार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुज्जो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया दिखाऊ मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम न चेतियो तिन जुए जन्म सब हार गुरु तुफे हर चेता।

महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौ प्या हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसे एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मन्या जन नानक तिन जयकार पौड़ी राम नाम वखर है उत्तम हर नायक पुरखा मारा हर खेल किया।

सब चवो मुखो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाहा। हम क्यों कर जपे ए आणिया हर तुम बड अगम अगाहा।

गुरु सतगुरु मेल दयाल। गुरु सेवा हर हम पाया, हर हुआ हर कृपाल। सब आशा मन सा विसरी, मन क्यों का आल जंजाल। गुरु तुखे नाम दृढ़ाया, हम किए शब्द निहाल। जन नानक अतुट तन पाया, हर नामा हर तन माल। पौड़ी हर तुम वड वडे वडे वड ऊंचे, सब ऊपर वडे वडौना। जो त्यावे हर अपरंपर, हर हर हर त्याए हरे ते होना। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे हर पुरख जाने, मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सते, जुगाद सते, प्रतक सते, सदा सदा सते। जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरु मंत्र। हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत। हर आपे कट कट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत। हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत। हर आपे पिखिया पाईदा, सब सिस्त उपाई जी जंत। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर मांगे हर जन संत। जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम, हर मैं मन तन नाम शरीर। सब आशा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला। जो जप दे हर हर दिन सरात, तिन सेवे चरण नित कौला। नित सार संभाले सब जी जंत, हर वसे निकट सब जौला। सो बुझे जिस आप बुझाए सी, जिस सतगुर पुरख प्रभ कौला। सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ चेत मन, हर सहज समाज समाए। जन

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सब दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वाहन जिना सतगुर मन्या जन नानक वड पागल हन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किछ वखर होए सो वर्णिय तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जिस हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। मैला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाने, तिन विटो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्वाणी। श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुरुदे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरु बचन सभा गै लीता, दुख दालद सबो लह गया जानाओ गुरु हर दीता। सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत उपाय सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मनमुख दुर्जना, नानक रोग बजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने, नानक सो प्रभ मैं मिले।

खुद राज कानड़ा बाणी नाम देव जीओ की इको ओंकार। सत गुरु प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ बसे कटाकट।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार प्रत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राम।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जग सस्या हर जन हर हर हर निवलाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते। बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिनको क्या दिन से, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पजतई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नथई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विदान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने। ताते जन को आनंद भया है, रिद शुद्ध मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे होए कृपाल आप लिव लावेंगे, जन नानक सरन द्वार हर लाज रखावे।

मांगन मांगे पावनिया सो पाये सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिये हीर हीर विदाये। कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सदसंगी। कल्याण महला

योग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट देते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

आसरो गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा मन तन जापिए भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भये सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध भये गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाथिया दुख काल कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुभद दास ना

रामा राम रामो सुन मन पीजे, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे रहाओ। कास्त में ज्यों है बेसंतर, मत संजम काढ़ कटी।

जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम सुल और

पुरग मुक्त बैकुंठ सब बांचे, नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे, मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन

कांड खड़ग गुर ज्ञान करारा बिक छेद छेद रखती जय आन आन समदा बहु कीनी पल बैसंतर पसम करी जय माँ उगर पाप

जन हर भगवान दिखी जाए। साकत सूत बहु गुरु जी भरिया क्यों कर तान सनी जाए। संत सूत किस मिकते नाही साकत संग न की जाए। सतगुरु साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जय। अंतर रतन जवे हर मानक गुर कृपा ते ली जय। मेरा ठाकुर बड़ा बड़ा है।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन को थम दी जय बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरमुख ज्योत

राम नाम अनुग्रह बो किया, गुरु साधु पुरख मिली जय, गुण राम नाम विस्थिरन किए, हर सगल पवन जस दी जय, साधु साध साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय, जो जल मीन जलन जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय, माँ अपाग अपाग है जिनके, तिन साधु तूर न पी जाए, तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे, दंड तर्म राय का दी जाए, सब तीर्थ बरत जग पुन किए, हिवे गाल गाल तन छीजे, अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत, को पुजे ना तोल तुल

मन तम अर्थ करो सब आ गए रस गुरमते ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय।

नाम बिना नक से नर देखो तिन पस पस नाक वढ़ी जाए साकत नर अंकारी कही है बिन नाम है त्रिग जीवी जाए जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण परी जाए नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाए कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाए किल बिखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहा मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुरपुरा कार्ड कटी जाए।

सहजे हर रस पीजै। माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै तचीजै। अज्ञान अंधेर महापंच बिखरा अहंकार पार लग लीजै। नानक राम रम रम रम रम राम ते गत की जय। सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नाम रले मिली जय। छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए

अवर सियाणत सगली पाज, जय बख्शे तैं पूरा पाज रहाओ। नौ तेरा ताण नौ दीवान, नौ तेरा लश्कर नौ सुल्तान, नाए तेरे मान महत परवान, तेरी नदरी कर्म पवे निशान, नाए तेरे सहज नाए सालाहा, नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए, नाए तेरे सब सुख वसे मन आए, बिन नावे बांधी जमपुर जाए, नारी बेरी कर बरदेश, मन किया खुशिया की चैवेश, जा सदे ता फिल न पाए, नानक कूड़ कूड़ो हो जाए। प्रभाती महला पहला, तेरा नाम रतन कर्म चानन, सुर्ख तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे, सगल ली जय कोए, यो संसार सगल विकार, तेरा नाम दारू अवर नास्त, करणहार अपार रहाओ। पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़, तेरे लाल कीमत ता पवे, जा सिरे होवे होर, दुखा ते सुख उपजे, सुखी होवे दुख, जित मुख तू सालाई है, सित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू और पला सहसार, जित तन नाम न उपजे, से तन होए खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्म उचरे, संकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध पै उदासी, देवी मर्म न पाया, बाबा मन साचा मुख साचा कहिए, करिए साचा होई, दुश्मन दुख न आवे नेड़े, हर मत पावे कोई, रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी, तीन नाम के दासा, ते तस्कर जो नाम ना लेवे, वासे कोट पंचासा, जे को एक करे चंग्याई, मन चित बहुत बसावे, एते गुण एतिया चंग्याईया, देना पछोतावे, तुद सलान तिन तन पल्ले, नानक का तन सोई, जे को जियो कहे ओना को, जम की तलब न होई। प्रभाती महला पहला, जा के रूप नाही जात नाही, नाही मुख मासा, सतगुरु मिले निरंजन पाया, तेरे नाम है निवासा, औदू सहजे तत विचार, जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ। जा के कर्म नाही धर्म नाही, नाही सुचमाला, शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई, सतगुरु रखवाला, जा के बरत नाही नेम नाही, नाही बकबाई,

कांसा तहिया दर परवान, दिख अमृत दो संकर जान। क्या कही है सर्वे रहा सुनाए, जो किछ वर्त

आया सो जन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कपनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्टक तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान तीरथ नहीं कोए सर संतोष।

पुरा नावण पशु करे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत कौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार है पर कर पावे मान आपा मध्य आप पर गास्या पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो तै तै मांगो देहे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गौ लवेरी सहजे बछड़ा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने

एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही एव खेल खत्म का, ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी।

है इहो रहा निर्वाण जिसते होआ सोई कर मान्या नानक गिर ही उदासी सो करवाण हरवाती महला पहला दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हौ तिस कै बल जाई पाप पुन की सार न जाने फूला फिरे अजाई बोलो सच नाम करतार सुन बहुर ना आ।

ऐसा अमृत अंतर जूठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक प्राप्यो तन सुख होए। परवाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मानिया, और न रांझन हारा, एनस जिया देख संभाले, तिथि की सरकारा। मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, अत रस लाल सगूड़ो। रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी, अमृत पीवन हारा। जिसकी रचना सो विद जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल बिगासे, सस्कर सूर समाया। काल बिंदु से मन सामन मारी, गुर प्रसाद प्रभु पाया। अति रस रंग चलू ले राती, दूजा रंग ना कोई। नानक रसम रसाए राते, रब रहया प्रभु सोई। परवाती महला पहला, बारे में रावल खप जावे, चहो छह में सन्यासी। योगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी। शब्द रते पूरे बैरागी, औ हथ हस्त में पीछिया जाची।

अक्षर दुख पाए, शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगह माने हम दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराशत काल नसे, करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहां करे बपुरा जन बरते, गुरुमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरुमुख आवे साध मना, रहाओ गुरु उपदेश साथ सुख जाको, क्या किस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ, खोजत गुरुमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चरावे, बाहर जा तो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे, सो गिर ही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आत पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, सात शब्द मन मानिया, राग करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरुमुख विरला कोई बूझे, सब दे रहा समाय, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई, हर हर नाम जपो जन भाई, गुरु प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई रहा, हम दिन पगत करो दिन राती, इस जुग का लहा भाई, सवा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम सितलाई, सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुरु दिया दिखाई, करवाती महला तीजा, निर्गुणी आरे को बस ले स्वामी, आपे ले हो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सब दे दिहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टों बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई, रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुरते पाना जापे, हम दिन सहज समाई, तेरे पाए पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर कृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड अवर न दाता, पूरे गुर ते पाई, करवाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर के शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई, रहाओ गुरमुख सालान से साध पायन।

गुर कै सबद कमल पर गासिया सौ मैं दुर्मत खोई सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल होआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपनी विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग से आया प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्ते विच पल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोषं चे जो किछ करे सो नरक परे एको शब्द एको प्रभ वर्ते सब एक स्ते उत्पत चले नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहा अमृत नाम कोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन दान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर गवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा गुर पद कारे हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोय फाते माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय नवस्यो ऋण बादे बहु विद्वाल सत्संगत मिल मत बुध पाई हों छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल
दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपाधारी गुण गाए रस प्रतीक दावत सुनत दौ पे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नवस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे देह मानुख नाम बिना नकटे नकीक कट कट रमैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो।

परमंगल हर प्रवलहे, जो नर परम परम उद्याने, तेसा कुत मूड मुहे, जो मृग ना भी बसे बास बचना, प्रम प्रम्यो चार गहे, तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ, मत देवो हर प्रवलहे, जन नानक को गुर हाथ सिर तरयो, हर राम नाम रव रहे, हर बाती महला चौथा, मन लागी प्रीत राम नाम हर, हर जप्यो हर प्रभु वडपा, सतगुरु बचन सुखाने हीरे, हर तारी हर प्रभु कृपा, मेरे मन पज राम नाम हर निमखा, हर हर दान दियो गुरपूरे, हर नामा मन तन बसा, रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर, जप सोबा गुरमुख कर पुफा, हलत पलत जन पै सुहेले, मुख उजल गुरमुख तरफा, अनपौ हर हर हर लिव लागी, हर उर्धार्यो गुर निमखफा, कोट कोट के दोख सब जन के, हर दूर किए एक पलफा, तुमरे जन तुम ही ते जाने, तब जान्यो जन से मुखा, हर हर आप करो हर जन में, जन नानक हर प्रभ इकफा, प्रभाती मैला चौथा, गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जपबा, तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा, दिख दुख दे बां दे कडबा, जप मन राम नाम हर धाबा, उपजंप उपाय ना पाये कतहु, गुरपूरे हर प्रभ लाबा, रहाओ राम नाम रस राम रसायन, रसपिया गुरमत रसदा, लो मनूर कंचन मिल संगत, हर उर्धार्यो गुर हरवा, हौ मैं बिख्या नित लोग लुवाने, पुत कलत मोह लुबा, तिन पग संत ना सेवे कबहु, ते मन मुख पूंगर परदा, तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो, हम करे हार तुम सरनवा, ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी, जन नानक दास तुम नवा, सत्ता पहला प्रभाती विपास पड़ताल महला चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ न जान सुन मन गुरमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा तरत बर्तन को पानी निमख न विसारो सेवो सारंग पानी मन सतगुर सेव होए परंगते हरख सोगते रह निरारा का तू पावे प्राण पते रहाओ काचड़ पोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटंग सगल बनाए रिजक समाहे जल थल मीत सोहर सेवो नीता नीत तहां सखाई जय कोई न होवे कोट अपराध इक खिन में धोवे बात करे नहीं पछोतावे एका बक्स फिर बोर ना बुलावे किर्त संजोगी पाया भाल साध संगत में बसे गोपाल गुरमिल आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मुरार करवाती महला पंजवा प्रभ की सेवा जन की शोभा काम क्रोध मिटे तिस लोभा नाम तेरा जन के पंडार गुण गावे प्रभ दर्श प्यार तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई काट

जन लिए छुड़ाई रहाओ। जो जन रहता प्रभु के रंग, तिन सुख पाया प्रभु के संग। जिस रस लाया सोई जाने, पेक पेक मन में हैराने। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वसिया प्रभु सोए। सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभु के हर गुण गाए। ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार। कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद। हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे। इस गुर की हम चरनी।

कलेस जो तिस पावे सो फल होस तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाए वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल गटा के अंतर जामी आठ पैर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाइए, कहो नानक वड पागी पाइए।

गुरपुरा पाइये वडबागी, दर्शन को जाइये पुरबान रहाओ। किलगित में ते शब्द संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आपरगास, चरण कमल मन माए निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभु पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपा धार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोन न भवे, इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला दास, जल तल मैयल पेखे परपूर, नानक उदरस तिस जन की दूर, प्रभाती मैला पंजवा, कुर्बान जाई गुर पूरे अपने, जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बारक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन स्यों हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान से राम ना पाया, साच शब्द तुझ माए समा।

खगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वितों कुर्बानी, पाओ पगत गुरमती पाए, हों मैं विच्चों सबद जलाए। तावतरा

जप तप संयम हो मैं मार, जीवन मुक्त जहाँ शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुरंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूढ़ मरे, अंधा परया पर पर कोवे, अंतर की मलकदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजीगर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन।

नदर पछाण प्रभाती महला पहला दक्षिणी गौतम तपा अहल्या स्त्री किस देख इंद्र लो।

दयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारह काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किस वरते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई।

अंकर झूठा क्यों सुच होए, सब दी तो वै विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना खाक रहावे।

सार हर जस कर्म धर्म पत पूजा काम क्रोध अग्नि में पूजा हर रस चाख्या तो मन पीजा प्रणवत नानक अवर न दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एक और अब रहा सब थाई अवर ना दी सह किस पूछ चढ़ाई रहा मन तन आ गया जी।

मंत्र शीतल गुरु बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुरु बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई, प्रभाती महला पहला।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंदर न होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन तोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरन तार। दूजा पाओ कर पूज दे मनमुख अंग गवार।

हर मंदिर में मन लोहत है, मोया दूजे भाई, पारस पोते है कंचन भया, कीमत कहीं ना जाए। हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए, नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला की जा, तय पाए जागे से जन जागरण करें, होमे मेल उतार सदा जागे कर अपना राखे, पंच तस्कर का दे मार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए, जित मार्ग हर पाई है, मन से ही कर्म कमाए रहाओ। गुरमुख सहज तुम उपजे, दुखों में विच्चों जाए, हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए। गुरमति मुख सोने, हर राख्या उधार, ऐसे ओथे सुख गणा, जप हर हर उतरे पार। होमे विच जागरण ना हो वही, हर पगत ना पवई थाए, मन मुख दर टोई।

तै सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अस्पदिया इको अंतार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग अनंत स्यों जुगता उर्ज

तू ठाकुर इहो गिरो सब तेरा, कहो नानक गुर किया निबेरा। प्रभाती महला पंजवा। मन में क्रोध

छोड़ बद नजर पर नारी वेश न पाये महा दुखियारी बोले नाही होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी अंते रहता दुख देही सहता हुकुम न बूझे व्याप्या ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल वेद सिमरते मन मुख कर्म करे अजाई जो बालू कर ठौरना ठाई जिसनो पै गोविंद दयाला गुर का बचन तिन बांधियो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिन कै संग तराया जे होवे पाग का दर्शन पाई है आप तरह सब कुटुंब तराई है रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम तिलक सब काते धर्म राय के कागर पाते साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माए समाया राम रमत हर हर सुख पाया।

जन्म का टूटा गांडा जब कब संजम नाम समा लिया अपने ठाकुर नगर निहा लिया मंगल सुख कल्याण तिथाई जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करी जा चरण कमल निमख हृदय धारे गोविंद जपते सब

कपूर मात पिता हर प्रीतम नेरा साजन भरवासा तेरा कर गए लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास करवा की बाणी भगत कबीर जी की।

भजे पुरुषोत्तम काशी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रहा रव ऐसा रूप बसानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे अमद रूपी मेरो रामैया रहाओ बावन भीखू बाने भीखे

हृद अंतर कर तलकाती। ठग दुष्ट बगाले लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दुष्ट रता निस्वादं रहाओ। नित प्रति स्नान शरीरं,

पूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पगनाचस चित्त अकर्मं एलं पटनाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्रासन रे लंपट कृष्ण आवासन जिन आत्म तत्व न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है। रहा सगल परम डाल

बिहात है जय जावंती मेला नावा। रे मन कौन गत हुए है तेरी, यह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बिखिया

योग सबदं ज्ञान सबदं वेद सबदं तां ब्राह्मणे खत्र सबदं सूर सबदं सूदर सबदं प्राकृते

बनता विनोद सुत कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबत कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत।

तत आसन नानके गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रचति चर्मणे नवंत द्वारं भीतरहंतं

सुर दिसहि दुखम थान बसंत पूछै मैं सिमरंत मरण सदा छिते। होवंत आ गया भगवान पुरखे नानक की सास अकर थके।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे नृत मोहन अलक बुद्धन रतंत बनता दिनोद साहन जो बन बेहतर कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत।

हरे दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जी कृत पालके अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहम् भं अहम् बंधं भरं।

होत। अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अघ खंडने ऋद बसंत बैधीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत श्रोता

बते विपरीत बुद्धिं मारत लोक नानक चिरंकाल दुख भोगते।

नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्गराजनि नच दुर्लभं भोजनं विज्ञनं नच दुर्लभं स्वच्छ अम्बरे

परम बादन अवर्त एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान भृग जन मने हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन।

करण कदे न चित्तो, जाचा अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग कितो। अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तव।